0: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
3: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
4: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
3: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
5: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपको अपने जीजू को जीजू से ज्यादा बनाना था, कजन जीजू थे, तो आपने अपनी दीदी का डिवोर्स करा दिया. हाउ कन्वीनियंट.
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: 2023 में अगर ऐसी वाहियात कन्फेशंस है आपके पास, मेरे पास अभी भी वही पुराने नॉन जजमेंटल कान है मेरी जान. हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. आई बी हैप्पी टू रोशिफाई यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टा, यू कैन फाइंड मी ऑन FB. एंड फॉर द मोमेंट मेरे साथ है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हे,
3: हेलो.
1: आपकी जब मैंने कन्फेशन पढ़ी ना, एंड यू वर लाइक कि मैं ये और किसी को नहीं बता सकता, और आपने मुझे एक सेंटेंस में बताया, तो मुझे ना थोड़ा सा खराब लग रहा था. और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं जब आपकी कन्फेशन सुनूंगी तो मुझे थोड़े से ज्यादा खराब लगेगा. इज दैट राइट?
3: शायद.
1: ओके, हिट मी विद इट. ओके, सो व्हाट्स योर कन्फेशन?
3: ठीक है, तो मतलब बहुत रिसेंटली हुआ था ये. एंड मैं मेरा दोस्त, एक मेरा बहुत पुराना दोस्त था, मतलब हम काफी अच्छे दोस्त थे, बहुत पहले से, मतलब बचपन के ही दोस्त हैं. मतलब जैसे होता है ना कि छोटे भाई और बड़े भाई वाला रिलेशनशिप, वो था मेरा उसके साथ. सो एक लड़की जिसको मैं डेट कर रहा था बहुत टाइम से, एंड हम लोग तीनों ही दोस्त थे आपस में. वो भी नई नई, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरे साथ रहता था, मेरा दोस्त, तो हम लोग तीनों आपस में काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी. आपस में बहुत घूमते थे, मिलते थे एंड ऑल. तो हुआ क्या कि मुझे कभी कभार ऐसा लगता था, मतलब क्योंकि मैं बोल नहीं पाता था, क्योंकि अब कोई आपका छोटे भाई जैसा है तो आप उसको कैसे बोलोगे कि यार मुझे सही नहीं लग रहा है. तो मुझे वो उसका टच या फिर उसका बात करना, उसका बात करने का तरीका, चीजें छुपाना, क्योंकि जब भी वो लोग घूमने भी जाते थे ना, तो मुझे किसी और से पता लगती थी कि वो लोग घूमने गए, क्योंकि हम दोनों दोस्त थे ना.
1: आपका दोस्त और
3: मेरी एक्स गर्लफ्रेंड.
1: ओके,
3: ठीक है.
1: तो वो तब आपकी एक्स गर्लफ्रेंड थी या तब आपकी गर्लफ्रेंड थी?
3: तब मेरी गर्लफ्रेंड.
1: अच्छा,
3: तब मेरी गर्लफ्रेंड.
1: हाँ, ओके.
3: तो जब भी वो घूमने घूमने भी जाते थे, कहीं भी जाते थे, तो मुझे किसी और से पता लगता था कि वो लोग घूमने गए हुए हैं, वो लोग घूमने गए हुए हैं. तो फिर क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली रिएक्ट कर जाऊंगा कि हाँ हाँ मुझे पता है यार.
1: हाँ,
3: क्योंकि अगर मैं उन्हें ये बोलूंगा कि मुझे नहीं पता, तो वो तो सोचेंगे यार इसको तो वो कुछ भी नहीं बताती है शायद इसको, क्योंकि वो लोग तो बोलेंगे मुझे टोकेंगे, तो मैं वो चीज एक्सेप्ट कर लेता था. बट मैं जब अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता था कि तुम ऐसे चीज क्यों छुपा रही है, तो देन सामने से ये आता था कि मेरी लाइफ है, मैं जो भी करूं. मैंने कहा ऑब्वियसली वो उस चीज के लिए तो मैं कौन ही होता हूँ बोलने वाला, बट मुझे छुपाने वाली बात तो है ही नहीं है. ठीक है, देन एक दिन हुआ क्या कि मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, और उसने मुझे ऐसी रैंडमली मेरे पे थोड़ा सा चिल्लाना शुरू कर दिया. उसने बोला कि मैं यार बहुत प्यार करता हूँ उसे यार. मैंने यार किससे? तो वो बोल ही नहीं रहा था, वो चुप हो गया था, वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था. मैंने कहा बोलना यार. कह रहा नहीं यार हमारी खराब हो जाएगी दोस्ती. मैंने कहा नहीं तू बोल दो. और फिर उसने फाइनली बोल दिया कि इससे. मैंने कहा क्या बकवास कर रहा है
1: इससे, तो मतलब आपकी गर्लफ्रेंड से?
3: मेरी गर्लफ्रेंड से. तो मैंने कहा क्या बकवास कर रहा है यार. कहता नहीं यार मैं सच बोल रहा हूँ. एंड वो मतलब रोने सा लग गया. और फाइनली उसने फिर मुझे बताना शुरू की एक एक चीज कि जब एक साल से वो लोग फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स टाइप्स में थे, एंड वो बात मुझे पता ही नहीं थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था इस बारे में कि उनकी आपस में बातें होती थी. मेरी गर्लफ्रेंड उसे ये भी बोलती थी कि मैं प्रियांशु को डेट नहीं करना चाहती थी, बस तू कैसे भी करके मुझे इससे निकलवा दे.
1: आर यू सीरियस?
3: एंड मैं वो चार्ज पढ़ के काफी ज्यादा बुरा लगा मुझे कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं. मेरे मतलब ज्यादा दोस्त नहीं होते थे, इतने दोस्त नहीं थे, मैं बहुत कम लोगों से क्लोज रहता हूं. जब वो लोग चले गए तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं बात किसको बताऊं, क्योंकि मैं किसी को भी नहीं बता सकता था. मेरी लाइफ में ऐसा कोई क्लोज नहीं था कि मैं उसे बोल दूं कि मेरे साथ ये हुआ है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. क्योंकि ऑब्वियसली आप इतने टाइम से किसी के साथ थे, आपके एक रिलेशन नहीं, आपके दो रिलेशन साथ में जा चुके हैं. वो तो बुरा लगा ही, बट मुझे उसका बहुत ज्यादा बुरा लगा कि हम कितने टाइम से दोस्त थे, 3-4 महीने हो गए हैं, और मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसको बताऊं. एंड आई थॉट कि यहाँ पे चीज बताई जाए, क्योंकि मम्मी पापा को तो ऑब्वियसली नहीं बता सकता मैं चीज.
1: मैं तो ऐसे इमो भी हो रही हूँ तेरी स्टोरी सुन के, मेरे को तो खराब लग रहा है. आई विश आई कुड डू मोर देन जस्ट रोशिफाई यू, बट एट द मोमेंट यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी. एंड अच्छा ठीक है, तो तू ये रोशिफिकेशन ही रख ले फॉर द मोमेंट.
4: You've been roshified.
1: But you know what, Mystery Caller, I have a feeling that before this year is over, you would have met the love of your life.
3: Thank you.
1: I love you.
3: I love you too.
1: थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद मी. और अगर ऐसे ही मेरे मिस्ट्री कॉलर की तरह आपकी भी जिंदगी में एक स्टोरी है विच यू कांट शेयर विद एनीबडी एल्स, मैं हूं ना आपकी ब्रोशी. नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो व्हाई डोंट यू सेंड मी योर नंबर एंड आई प्रॉमिस आई कॉल यू एंड इफ आई कैन आई इवन हग यू. ओके, ऑन दैट नोट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
3: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, assisting first time home buyers, also offering zero closing cost refinance option. For more information, call 732-339-3155. Log on to lionmtg.com.
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: कोहली goes down the ground, कोहली goes out of the ground.
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
5: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: से सुनते रहिए वे जुनून ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप. सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ.
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
2: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मैंने ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा इंस्टाग्राम पर क्लिप देखा था विच सेड कि क्या आपको पता है एक ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिलेशनशिप के बीच का फ़र्क क्या होता है. एंड दैट पर्सन वेंट ऑन टू से कि बस एक्स्ट्रा ही वर्ड का फ़र्क है. ऑर्डिनरी तो दोनों हैं लेकिन अगर एक रिलेशनशिप में आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया ना तो वो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली मैजिकल और एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है, विच इज़ ट्रू. मेरे बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहे हैं जिनमें क्योंकि मैं बहुत ही इंटेंस पोएटिक ड्रीमर लवर हूँ, सारा हैवी लिफ्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप मैंने किया है. एंड अक्सर माय पार्टनर्स वुड स्लैक एट द जॉब कि इतनी मेहनत कर रही है, इतना मोहब्बत कर रही है, इतना इश्क फरमा रही है, तो हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं. और जहाँ उन्होंने आराम किया दे ड्रॉप दैट एक्स्ट्रा हार्ड वर्क टू मेक द रिलेशनशिप एक्स्ट्रॉर्डिनरी. और फिर क्या हुआ कि अकेले कितना बोझा उठाएगा इंसान. एक रिलेशनशिप इज अ टू वे डांस. अगर उस वॉल्ट्स में आपने हाथ छोड़ दिया, अगर उस डांस में आपने कमर से हाथ हटा दिया, तो फिर मैं अकेले कितनी देर तक डांस करूंगी. एंड सडनली द रिलेशनशिप्स ग्रो फ्रॉम एक्स्ट्रॉर्डिनरी टू ऑर्डिनरी टू नथिंग. और ये सब हमारे हाथ में होता है, पता है. इट्स नॉट कोई और आके हमें नहीं बताता है. हमारे को एक सेंस होती है रिलेशनशिप में व्हेन थिंग्स आर गोइंग डाउन अंडर. और अगर आपकी रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है एंड यू वांट टू कंट्रोल इट, यू जस्ट नीड टू टॉक टू समबडी अबाउट इट. व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर. आई बी सो हैप्पी टू टॉक टू यू बिकॉज आई हैव बीन देयर, डन दैट, वॉर्न द टी शर्ट, टॉर्न द टी शर्ट एंड फेल्ट द एक्सपीरियंस थ्रू माई सोल. ऑन दैट नोट आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या एफबी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड व्हाइल यू फाइंड मी कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अब रिलेशनशिप में वो बात कहाँ रही, जहाँ पहले एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही आपको लगता था आह प्यार का सबसे ज्यादा सुख पा लिया, आज एक दूसरे के साथ कितना भी नॉटी हो जाए वो वाली फील ही नहीं आती, क्योंकि राइट इन द मिडल ऑफ इट यू आर थिंकिंग अबाउट यार इससे अच्छा तो मैं चाय पी लेती। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा हो रहा है देन मे बी अ सिंपल फेंग शुई टिप विल चेंज ऑल ऑफ इट। करना कुछ नहीं है, सुबह सुबह उठना है, अपना मेन डोर का दरवाजा खोलना है, लेट द ब्रांड न्यू एनर्जी ऑफ द डे कम इन। माना जाता है कि अगर रोज आप अपना दरवाजा खुला रखोगे तो जो स्टैग्नेंट रिलेशनशिप्स हैं या करियर है या वो जॉब प्रमोशन जो नहीं आ रही है वो सब हिलने डुलने लग जाएगी, अनलाइक योर लेजी पार्टनर। इसे ट्राई करके देखो एंड मे बी ऑल द मिरेकल्स दैट यू हैव एवर होप्ड फॉर विल कम ट्रू फॉर यू। एंड वंस दैट हैपेंस, थैंक यू बोलने के लिए माय डार्लिंग, यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो गो अहेड, फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक, एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Aaj mere saath on the Mirchi hotline is someone so terrific, I can't even begin to tell you because... जो मेरे साथ आज इस हॉटलाइन पर हैं, उनका नाम है रूथ डिसूजा प्रभु, हु इज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एंड फूड राइटर बेस्ड इन बैंगलोर. बट वो सब छोड़ो, उनके जितने भी ऐसे फूड क्रिटिक वाले काम हैं, दे हैव अपीयर्ड इन द न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा, मतलब इतने सारे पब्लिकेशंस दैट आई एम लाइक जस्ट फैन गर्लिंग ऑन हर राइट नाउ. हेलो, वेलकम टू द शो रूथ. क्योंकि हम जब भी खाने की बात करते हैं या प्यार की बात करते हैं या दिल टूटने की बात करते हैं, मुझे बड़े मजे आते हैं. और वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हार्ट ब्रेक राइट नाउ. मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने जो इतनी इनक्रेडिबल किताब लिखी है अबाउट द बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन इंडिया, इट्स ओनली बट नेचुरल कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि वो एक कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट है इंडिया में जो हर फूडी कपल को एक बार तो जाकर चेकआउट करना चाहिए फॉर द फूड या द एम्बियंस या ऐसा कुछ भी.
2: आई विश आई कुड टेल यू देयर वाज ओनली वन रेस्टोरेंट. क्या मैं एक से ज्यादा बोल सकती हूँ?
1: अच्छा, आप जो एक से ज्यादा तो बोल सकते हो, बट आप जो एक बोलोगे मैं उसे नंबर वन पे काउंट करूंगी. ठीक है?
2: ठीक है. आई वुड से दैट द वन रेस्टोरेंट दैट कपल शुड डेफिनेटली ट्राई इज अ प्लेस इन बैंगलोर कॉल्ड द फार्म हाउस, स्पेशली बिकॉज इट बेस्ड इन द मिडल ऑफ अ फार्म. इट्स सराउंडेड बाय ग्लास. ऑल ऑफ द प्रोड्यूस कम्स फ्रॉम द फार्म. Right from right next to you, like 6 feet away, and into the kitchen and cooked for you on an open wood fire. And the menu changes every month. So I don't think it can get better than that. Wow. It's a beautiful, romantic place to be. So that would be my top pick.
1: That sounds delightful. मतलब imagine कि आपके आस-पास खाना ही खाना उग रहा है, आप और आपका partner बीच में बैठ के ऐसे खाना खा रहे हो, freshly picked from the farm in front of you. You're right. इससे ज़्यादा romantic क्या है? इससे ज़्यादा romantic?
2: हाँ.
1: And you're going to go into number two, है ना? Because मैंने आपसे एक पूछा था, बट आप बोल रहे थे कि नहीं, मैं तो दो तीन बताऊंगी.
2: डेफिनेटली मैं दो तीन भी बता सकती हूँ. द थिंग इज आई बिलीव दैट बिकॉज यूर इन अ रिलेशनशिप, थोड़ा एफर्ट तो बनता है. तो आई वुड से ट्राइंग टू स्कोर रिजर्वेशन एट से समथिंग लाइक प्रतीक साधु's नार इन कसौली. It's such a romantic place, and again you have Pratik Sadhu and his restaurant,
1: right,
2: and all the foraging that happens with it.
1: Right.
2: So that would be another place.
1: And I want to tell people, just a second, I want to tell people कि ये जो restaurant का नाम अभी आपको बताया है रूथ ने, वो काफी रूथलेसली आपके वॉलेट से आपको जुदा कर देगा. तो अगर आपने अपने मम्मी पापा की किडनी विडनी सब बेच दी है, तभी सोचना कि आप अपने पार्टनर को कसौली के इस रेस्टोरेंट ले जा सकते हो. आई जस्ट हैड टू ऐड दैट, सॉरी. इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट.
2: आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ऑल गुड थिंग्स कम एट अ प्राइस. सो
1: हाँ, पापा की किडनी बेच दो, इट्स ओके, ही विल ग्रो अनदर वन. बट आपकी गर्लफ्रेंड को एक ही बार इम्प्रेस होगी. करेक्ट.
2: Yes. And the third place I'd like to recommend is this place called the Naru Noodle Bar,
1: okay,
2: which has only 20 seats and it's in Bangalore.
1: Hmm.
2: And right from its inception, it's always been about the fastest finger first to be able to score a seat. So if you can get that for your partner, I think you have half the battle won there itself. It's a ramen bar par excellence.
1: Wow.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: अरे यू के बड़ा कोरी भाई, बजा।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

आप अपने पार्टनर को कितनी भी मोहब्बत करते हो और अपने आप को कितनी भी पिकासो की छठी औलाद समझते हो ना, अनलेस योर पार्टनर इज डेटिंग यू बिकॉज आप एक ऐसे आर्टिस्ट हो जिसकी पेंटिंग्स किसी म्यूजियम की दीवारों में, प्लीज उसे कुछ पेंट करके मत दे देना, पुअर थिंग वोंट नो व्हाट टू डू विद इट. सो अभी बहुत रिसेंटली देयर वाज दिस गाय एंड हम बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड आई न्यू दैट ही वाज क्रशिंग ऑन मी जो भी है, ठीक है. एंड ही इज लाइक कि अगले महीने तेरा बर्थडे आ रहा है, मैं ऑलरेडी तेरे लिए कुछ लेकर आया हूँ. एंड आई वाज लाइक ओह वाओ यू बी सो कूल, बर्थडे मंथ अगस्त है लेकिन जुलाई में सेलिब्रेट कर रहे हैं. फिर उसने ना एक ऐसे बड़ा सा कैनवस स्ट्रेच आउट किया और उसमें एक, मुझे ऐसा लग रहा था कि पेंट वेंट गिर गया है और पता नहीं हम अब इसका क्या करेंगे, पोचा बनाएंगे मेरे घर के लिए, ये. एंड देन ही सेड, मैंने तेरे लिए ये पेंटिंग बनाई है, ये एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन ये प्यार का प्रतीक है, जैसे हम दोनों के बीच के प्यार के कोई नाम नहीं है लेकिन इसमें इतना एसेंस है, वैसी तू देख रही है ये रेड लाइने और ये येलो लाइने. आई वाज लाइक, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि नर्सरी स्कूल में पेंटिंग क्लास थी और तुम लास्ट ही आए थे इसमें, लेकिन आई डिडंट नो हाउ टू से इट टू हिम. ओके, सो आई वाज लाइक थैंक यू सो मच फॉर दिस, आई रियली अप्रिशिएट इट. अपने बर्थडे के आसपास इसे जरूर फ्रेम कराऊंगी. अब समझ नहीं आ रहा कि फ्रेम करा के रखूंगी कहाँ, बिकॉज ये तो मेरे घर भी आता है एंड ही इज गोना आस्क कि वो पेंटिंग कहाँ है. बाथरूम में रख लूंगी मैं ये पेंटिंग, लेकिन ऑनेस्टली मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर मेरे बर्थडे के लिए आप कुछ करना चाह रहे हो अगले महीने, कुछ भी कर देना, एक पेंटिंग मत देना, ठीक है. आई नो हु माई फेवरेट आर्टिस्ट आर एंड आई विल रीच आउट टू देम एंड दे विल पेंट फॉर मी, ठीक है. एंड अ स्टोरी, कभी पेंट मत करना इफ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल पेंटर. ऑन दैट नोट, वट इज द वर्स्ट बर्थडे प्रेजेंट यू हैव एवर गॉट फ्रॉम योर पार्टनर? टू टेल मी अबाउट इट, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो वैली गो अहेड एंड टेल मी योर स्टोरी. कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: डॉगी स्टाइल सजेस्ट करने से पहले नो मैन एवर क्रिंजेस, ठीक है? मतलब सबसे पहले बोल देते हैं ये. लेकिन अगर डॉगी को बेबी सिट करना हो तो भाई इनकी हालत टाइट हो जाती है. सो वन ऑफ माई रियली क्लोज फ्रेंड्स, शी जस्ट मेट दिस गाय ऑन अ डेटिंग ऐप. एवरीथिंग वाज गोइंग वेल. बंदा कहता है आई लव कुत्ते बिल्ली ये वो. बंदी का एक बहुत ही क्यूट अडोरेबल पपी है जो बहुत नीडी और क्लिंगी है. दैट काइंड ऑफ इज क्यूट, ओके. अब उसे अपने होम टाउन जाना था तो उसने अपने इस डेट वाले बंदे को बोला कि यार इसे दो दिन के लिए तू बेबी सिट कर सकता है. पहले तो ही वाज लाइक हाँ हाँ बेब व्हाई नॉट. दो घंटे के अंदर अंदर ही वाज लाइक कैन वी सेंड हिम टू लाइक दिस रियली नाइस डॉगी लॉज जो मेरे घर के आसपास है, बिकॉज यू नो मुझे काम पे भी जाना है, मेरे पास इतना सारा काम भी है और आई थिंक आई एम एलर्जिक टू डॉगी हेयर. एंड वी आर लाइक हाँ हाँ वी ऑल नो व्हाई यू आर सेइंग दैट, बिकॉज कहने में नंबर वन, लेकिन काम करने में मोस्ट मैन एंड अप शोइंग यू देयर ट्रू कलर्स. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है दैट यू डेटेड समबडी थिंकिंग दैट हाँ ये बंदा जैसा कह रहा है वैसा ही होगा, एंड यू एंडेड अप फाइंडिंग आउट दैट वो बिल्कुल उसका विपरीत है? अगर ऐसा हुआ है देन आई थिंक आपको ये स्कैम मेरे साथ डिस्कस कर लेना चाहिए ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है ROCH.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपको अपने जीजू को जीजू से ज्यादा बनाना था, कजन जीजू थे, तो आपने अपनी दीदी का डिवोर्स करा दिया. हाउ कन्वीनियंट.
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: 2023 में अगर ऐसी वाहियात कन्फेशंस है आपके पास, मेरे पास अभी भी वही पुराने नॉन जजमेंटल कान है मेरी जान. हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. आई बी हैप्पी टू रोशिफाई यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टा, यू कैन फाइंड मी ऑन FB. एंड फॉर द मोमेंट मेरे साथ है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हे,
3: हेलो.
1: आपकी जब मैंने कन्फेशन पढ़ी ना, एंड यू वर लाइक कि मैं ये और किसी को नहीं बता सकता, और आपने मुझे एक सेंटेंस में बताया, तो मुझे ना थोड़ा सा खराब लग रहा था. और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं जब आपकी कन्फेशन सुनूंगी तो मुझे थोड़े से ज्यादा खराब लगेगा. इज दैट राइट?
3: शायद.
1: ओके, हिट मी विद इट. ओके, सो व्हाट्स योर कन्फेशन?
3: ठीक है, तो मतलब बहुत रिसेंटली हुआ था ये. एंड मैं मेरा दोस्त, एक मेरा बहुत पुराना दोस्त था, मतलब हम काफी अच्छे दोस्त थे बहुत पहले से, मतलब बचपन के ही दोस्त हैं. मतलब जैसे होता है ना कि छोटे भाई और बड़े भाई वाला रिलेशनशिप, वो था मेरा उसके साथ. सो एक लड़की जिसको मैं डेट कर रहा था बहुत टाइम से, एंड हम लोग तीनों ही दोस्त थे आपस में, वो भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरे साथ रहता था मेरा दोस्त, तो हम लोग तीनों आपस में काफी अच्छी दोस्ती.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

मेरे एक्स के बारे में ना मुझे सिर्फ एक चीज, मतलब काफी चीजें थी जो पसंद नहीं थी, बट वन ऑफ द थिंग्स दैट रियली यूज्ड टू इरिटेट मी इज कि जब भी हम इकट्ठे होते थे वो कुछ ना कुछ चला देता था टीवी पर, एंड ही यूज्ड टू एक्सपेक्ट कि हम इकट्ठे बैठ के कोई फिल्म देखेंगे, कोई डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, कोई सीरीज देखेंगे, बट दैट काइंड ऑफ मेंट दैट हमें एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं होता था. वी वर ऑलवेज लुकिंग एट अ फिल्म और वी वर लुकिंग एट अदर थिंग्स बट नेवर टॉकिंग टू ईच अदर. एंड जब हमारा ब्रेकअप हुआ ना, आई रियलाइज कि हमारे ब्रेकअप में एक मेजर रोल था उस टीवी स्क्रीन का जो हमेशा हमारे बेडरूम में होती थी. एंड आई गेस जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो, एज मच एज नेटफ्लिक्स एंड चिल इज अ थिंग, अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप डीपली सीमेंटेड हो, तो लर्न समथिंग फ्रॉम माई टेरेबल मिस्टेक्स इन द पास्ट. अपने बेडरूम में टीवी कभी मत रखना, बिकॉज अगर ऐसा होता है ना, यू एंड अप वॉचिंग कॉन्टेंट विच इज ग्रेट, बट यू ऑल्सो एंड अप नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, विच इज नेवर ग्रेट फॉर अ रिलेशनशिप. इस नॉन टीवी टाइम को ट्राई करके देखो एंड वंस इट वर्क्स फॉर यू, मुझे थैंक यू बोलना मत भूलना. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और जिसके पास लव है उसके पास सब है, एंड आई लव यू लोड्स.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in...
3: ज्यादातर फिल्में फ्राइडे को फेल नहीं होती, मंडे को होती हैं। फ्राइडे तो मार्केटिंग का दिन होता है, देन कम सैटरडे जो होता है क्यूरियोसिटी का दिन, लेकिन मंडे सच बोलता है। तब पता चलता है ऑडियंस से टिकट्स खरीदने आई थी या दिल देकर गई थी। और आज के जमाने में जहाँ हर फ्राइडे कोई ना कोई फिल्म, कोई ना कोई गाना और कोई ना कोई नेक्स्ट बिग थिंग लॉन्च होता है, वहाँ मंडे से बड़ा क्रिटिक कोई नहीं होता। इसलिए अब सिर्फ ओपनिंग कलेक्शन से कहानियां नहीं लिखी जाती, वर्ड ऑफ माउथ लिखता है, रिपीट ऑडियंस लिखती है, और कभी कभी एक गाना या एक फिल्म अपनी असली जानी शुरू ही तब करती है जब उसका प्रमोशन खत्म हो जाता है। इस हफ्ते का मिर्ची टॉप 20 भी ऐसी ही कुछ कहानियों से भरा हुआ है। हाय, माय नेम इज सुरेंद्र सुंदरम एंड लेट्स गेट दिस शो ऑन द रोड। और नंबर 20 इस हफ्ते भूत बंगला का ये गाना तू ही दिसता।
4: नंबर 20

ओ बाय द वे, अरिजीत सिंह का एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी एक ऐसा गाना जिसकी कहानी ने साबित किया कि जब ऑडियंस किसी फिल्म को अपना लेती है ना, तो उसे कोई मार्केटिंग कैंपेन हरा नहीं सकता। नंबर 19 पर दिस इज मस्कारा बाय एआर रहमान एंड इरशाद कामिल। फिल्म का नाम तो आप जानते हैं, मैं वापस आऊंगा। नंबर 19।

वैसे धुरंधर अगले साल नेशनल अवार्ड्स में कितनी बड़ी प्रेजेंस होने वाली है उसका अंदाजा अभी से लगाया जा सकता है। लेकिन इस हफ्ते नेशनल अवार्ड्स ने एक और फिल्म को गले लगा लिया, आर्टिकल 370, बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस, यामी गौतम। और पता है मुझे इस जीत में सबसे खूबसूरत बात क्या लगी? बॉलीवुड यामी गौतम को हीरोइन बनाना चाहता था, यामी गौतम ने एक्टर बनना पसंद किया। जब सब ग्लैमरस फिल्म्स के पीछे भाग रहे थे, यामी ने कहानियां चुनी। अ थर्सडे, लॉस्ट, चोर निकल के भागा, द ब्रिलियंट हक एंड आर्टिकल 370, एक के बाद एक स्टेलर परफॉर्मेंस। एंड नन ऑफ द फिल्म्स हैड अ जौहर, अ चोपड़ा, अ भंसाली और इम्तियाज अली अटैच्ड टू इट। और आज नेशनल अवार्ड ने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं दी, एक करियर को सर्टिफाई कर दिया। स्क्रीन पर सरनेम नहीं दिखता, सिर्फ परफॉर्मेंस दिखती है। नाउ यामी का करियर आसान रास्तों से नहीं गुजरा, शी हैड टू डू व्हाट एवरीवन डज। लेकिन उनकी पहली फिल्म थी विद अ मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट, सुजीत सरकार। फिल्म का नाम विक्की डोनर। लोग इस फिल्म को आयुष्मान खुराना के लिए जानते हैं, बट इस फिल्म की असली स्थिरता यामी थी। इस फिल्म का वो गाना इसने हमें पहली बार बताया था कि एक नई एक्ट्रेस आ चुकी है। माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम विक्की डोनर। दिस इज पानी दा रंग।

0: जिस दिन धुरंधर 2 रिलीज हुई उसी दिन एक और फिल्म ने आना था, पर वो फैसला बदल दिया गया। कभी कभी एक फिल्म का इंतजार नहीं होता, एक इंसान का इंतजार होता है, और पैन इंडिया सुपरस्टार यश उन्हीं स्टार्स में से एक है। KGF के बाद 4 साल हो गए स्क्रीन पर उन्हें देखे हुए। बीच में टॉक्सिक की रिलीज डेट कितनी बार बदली, कभी शूटिंग का रीजन, कभी प्रोडक्शन का रीजन, कभी दुनिया की सिचुएशन का रीजन, लेकिन ऑनेस्टली ऑडियंस को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए बस एक बात मैटर करती है, दैट यश इज कमिंग बैक, और सिर्फ एक फिल्म में नहीं, 2 फिल्मों में। ऑफ कोर्स रामायण में वो रावण का रोल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मिलेगी टॉक्सिक। और जब इसका टीजर आया था, सबके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर टॉक्सिक है क्या? What is it about? तो चलो इसका जवाब खुद यश से सुन लेते हैं।
1: In India, we got independence in 1947, but state of India was still under Portuguese control till 1961. So the story is set in that era where it was time where a lot of Portuguese were, Indians were there. So in between that, there was trade, a lot of port, business. So in that era, if there is struggle for power, greed, and then gangster, you know, all the gangster things can happen with lots of Tommy guns and action. With that, there is a lot of complex human emotions where we there's a deep love story in it. There's a brother-sister sentiment, and also it's a father and son revenge saga. So it's a very interesting package.
0: तो सेटिंग पुराने दौर की है, इसमें गैंगस्टर्स हैं, एक पावर स्ट्रगल है, प्यार भी है, और साथ में रिवेंज भी, यानी एक प्रॉपर लार्जर देन लाइफ सिनेमैटिक मसाला यूनिवर्स। लेकिन टीजर के बाद जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट किया था वो है इस फिल्म का म्यूजिक, क्योंकि विशाल मिश्रा और राजशेखर की जोड़ी जब भी साथ आई है खाली हाथ नहीं गई। एनिमल में पहले भी मैं, एंड देन सयारा में तुम हो तो, और अब टॉक्सिक में तबाही। नाम भी वही, एनर्जी भी वही, और यश के स्क्रीन प्रेजेंस के साथ गाना बिल्कुल उसी स्केल पर सोचता है। बस एक वार्निंग दे रहा हूं, अगर इसका वीडियो देखने वाले हो तो बच्चों को थोड़ा दूर ही रखिएगा, इट्स नॉट सेफ फॉर देयर व्यूइंग। मिर्ची टॉप 20 पर डेब्यूइंग इन द टॉप 10, और नंबर 9 यह टॉक्सिक का तबाही। नंबर 9।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा बैक टू बैक गाना सुनेगा Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Surin ke saath only on Mirchi. It's hot.
2: Number 8.

0: धमाल इज अ सर्टिफाइड ब्लॉकबस्टर और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत लोग इसे एंजॉय भी करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन वेरी रिसेंटली मुझे एक अजीब सी रियलाइजेशन हुई। बचपन में मुझे कभी समझ ही नहीं आता था कि मम्मी पापा हर बार वही पुराने गाने आखिर क्यों सुनते थे। इतने नए गाने आ रहे थे फिर भी उन्हें सुनना था। मोहम्मद रफी को, किशोर कुमार को, लता जी को, आशा जी को, और तब लगता था शायद वो नए म्यूजिक को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। लेकिन आज समझ आया, कुछ गाने पुराने नहीं होते, हम उनकी उम्र के हो जाते हैं। YouTube पर वीडियो सर्व करते करते अचानक एक वीडियो पे आके मैं रुक गया। किसी शादी में एक वायलिनिस्ट मोहब्बते की धुन बजा रही थी, और जैसे ही ये थीम बजी, मैं फिल्म को याद नहीं कर रहा था, मैं अपनी जिंदगी याद कर रहा था। यस, आज देखते हैं तो मोहब्बतें एक बड़ी फ्लॉट सी फिल्म लगती है। प्रीमाइस ओवर द टॉप लगता है, कुछ सीन्स जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक लगते हैं, लेकिन फिर देयर इज शाहरुख खान, हाथ में वायलिन, कंधे पर स्वेटर और ये ट्यून, और बस सारी क्रिटिसिज्म चुप हो जाती है। यही तो कमाल है कुछ कॉम्पोजिशंस का, वो आपको फिल्म याद नहीं दिलाती, वो आपको आप याद दिला देती है। इस ट्यून का कमाल देखिए, लगभग 25 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी जब ये ट्यून बजती है, वी जस्ट आर ट्रांसपोर्टेड टू दैट टाइम, द शाहरुख खान ईरा, अमिताभ बच्चन एज नारायण शंकर, वो तीन लव स्टोरीज और गुरुकुल की ये कहानी, यू जस्ट नो। लेकिन जिस ईरा में अब हम हैं और जिनके गाने हम सुन रहे हैं, अगर आंख बंद करो तो याद नहीं आता कि फिल्म में क्या हुआ था। टेक द नेक्स्ट सॉन्ग ऑन द काउंटडाउन फॉर एग्जाम्पल, चुनरी चुनरी, आपको हमेशा सलमान खान और सुष्मिता सेन ही याद आएंगे, नया वर्जन उतना याद नहीं आएगा। और अगर एक और धुन है जो हर बार वक्त को थोड़ी देर के लिए रोक देती है, तो वो है ये कॉम्पोजिशन, हिंदी फिल्म्स के इतिहास के सबसे लेजेंडरी गानों में से एक, एन अनपैरेलल्ड परफेक्ट कॉम्पोजिशन बाय शंकर एहसान लॉय, लिखा है इस देश के सबसे ग्रेटेस्ट पोएट्स में से एक जावेद साहब ने, एंड इट हैज बीन संग बाय द फ्लॉलेस, द परफेक्ट सोनू निगम। मेरा रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक,
1: टॉप 20 रिवाइंड।

एक गाना जब बहुत बड़ा हिट बन जाता है, हम उसे एक्टर के नाम से याद रखते हैं, कभी सिंगर के, कभी फिल्म के, लेकिन उस गाने के पीछे कितने लोग अपनी जिंदगी लगा देते हैं उसकी बात बहुत कम होती है। पिछले कुछ दिनों से सैयारा फिर से डिस्कशन में है, बिकॉज़ द सॉन्ग इज आउट ऑफ द काउंटडाउन आफ्टर ऑलमोस्ट 60 वीक्स। लेकिन इस बार वो अपनी कामयाबी की वजह से डिस्कशन में नहीं है, रॉयल्टीज को लेकर हुई एक पब्लिक कॉन्वर्सेशन की वजह से। एक तरफ है कंपोजर तनिष्क बागची, जिनका कहना है कि उन्हें टाइटल ट्रैक के रॉयल्टीज नहीं मिले। दूसरी तरफ यशराज फिल्म्स ने क्लैरिफाई किया है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सारी पेमेंट्स और रॉयल्टी ऑब्लिगेशंस पूरी की जा चुकी है। देखो सच क्या है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा मिलेगा, हमें नहीं पता। एंड तनिष्क बागची ने वो पोस्ट जो है वो डिलीट भी कर दिया है। लेकिन

0: एक बात मैं जरूर जानता हूँ, जब कोई गाना इतना बड़ा बन जाता है ना जैसे सैयारा वाला, तो वो सिर्फ एक सिंगर का नहीं रहता, ना सिर्फ कंपोजर का रहता है, ना वो फिल्म का रहता है, वो हम सबका हो जाता है। बस उम्मीद इतनी सी होती है कि जिस गाने को इतना प्यार मिला उसे बनाने वालों को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिले। और वैसे हर जनरेशन का एक साउंड ट्रैक जरूर होता है, पिछले साल वो साउंड ट्रैक था सैयारा, लेकिन एक रोमांटिक गाना और भी था विच फॉर मी वॉज एट पार विद सैयारा, जिसमें अरिजीत का फिर एक मास्टर क्लास सुनाई देता है, कंपोज्ड बाय द सेंसेशन नोन एज शाश्वत सचदेव, वंस अगेन ऑन नंबर वन, दिस इज गहरा हुआ
1: नंबर वन।

इस गाने की गहराई में मैं कितने महीनों से डूबा हुआ हूँ एंड फिर भी आई डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट बट आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस बिकॉज मेरा टाइम अप हो चुका है बट रिमेम्बर आप और मैं यहाँ इसलिए मिलते हैं because we love our movies. So till the next time we meet on another episode of the Mirchi Talk 20, this is Suren, over and out. Mirchi Talk 20. Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot. Mm.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

one of the finest and most handsome villains, Danny. मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, या डैनी डेंजोंगपा। इनका जन्म सिक्किम में हुआ था, स्कूली पढ़ाई नैनीताल में, कॉलेज की पढ़ाई दार्जिलिंग में, और फिर फिल्मी पढ़ाई FTII पुणे में। वैसे ये ना इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे, इनफैक्ट उनका एडमिशन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में भी हो गया था, लेकिन कुछ फैमिली रीजंस की वजह से उन्होंने वहां से एडमिशन विथड्रॉ कर लिया। फिर FTII में भी वो म्यूजिक सिंगिंग का कोर्स करने गए थे क्योंकि वो बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन उसमें एडमिशन नहीं मिला तो एक्टिंग में एडमिशन ले लिया। यहीं पर उनकी दोस्त बनी जया भादुरी जी, जिन्होंने इनको सजेस्ट किया कि ये अपना नाम थोड़ा छोटा कर ले, क्योंकि उनका असली नाम सेरिंग फुनसोक डेंजोंगपा था। इनफैक्ट जया जी ने ही इनको ये डैनी नाम दिया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: 1979 की हॉरर फिल्म और कौन का ये गाना किशोर कुमार की आवाज में। अमित खन्ना ने ये गाना लिखा है, कंपोज्ड बाय बप्पी लहरी। एंड बप्पी दा ने ना इस गाने की कुछ ट्यून 1982 की फिल्म नमक हलाल के एक गाने में भी यूज की थी। मतलब इस गाने की जो स्टैंजास की ट्यून है ना, पैराग्राफ की, आपने सुने थे, एक बार वापस से सुनते हैं।
1: किसी को न पता चला क्या हो गया, ऐसी मिली नजरें के दिल खो गया।
0: समझ गए होंगे कौन से गाने में यूज हुआ है। नहीं, नमक हलाल का थोड़ी सी जो पीली है उसके स्टैंजास की ट्यून भी ऐसी है, सुनिए।
1: मेरा है जमाने से अलग रास्ता, मुझे भला दुनिया से क्या वास्ता।
0: और यहाँ जो हम सुनने वाले हैं वो है नमक हलाल का एक और आइकॉनिक सॉन्ग, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू, आपके साथ सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

0: 1981 की फिल्म नसीब का एक गाना है जिसमें सारे एक्टर्स विलन के अड्डे पे डांस कर रहे होते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, मतलब अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, रीना रॉय, किम, ये सब फैंसी ड्रेसेस में होते हैं और विलन के अड्डे पे डांस कर रहे होते हैं। अब इसकी शूटिंग की एक इंटरेस्टिंग बात एक इवेंट में ऋषि कपूर साहब ने शेयर की थी, सुनिए।
1: सो पूरे गाने में सब लगे हुए थे एंड हियर वाज शत्रुघ्न सिन्हा नॉट बॉदर्ड सिटिंग ऑन द चेयर, उनकी वजह से रीटेक पे रीटेक एंड ही कुडंट केयर लेस। देन मनमोहन जी गॉट एन आइडिया कि ऐसे कोई लंबा आदमी हो जो डांसर हो, he was called to actually do the double of Shatrughan Sinha and do that Cossack dance. Now, hum sab lage hain apni taraf se zor laga rahe hain, we got to do best in this, that. And yahan Shatrughan Sinha camera ke peeche baith ke in his own inimitable style, shabash, karo dance, ye karo. And he has a double doing his belly dance. And the tragedy of this is that when the song was completed, when we saw, he took away all the credit also of the ready song. शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या डांस किया यार।
0: नेक्स्ट टाइम आप जब ये गाना देखें तो ध्यान रखें कि जहाँ मुश्किल स्टेप्स है वहाँ शत्रुघ्न सिन्हा साहब आराम फरमा रहे हैं और उनका बॉडी डबल नाच रहा है। फिलहाल ये गाना सुन लेते हैं यहाँ पर पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन

1964 की फिल्म मेरा साया का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग संग बाय लता मंगेशकर, कंपोज्ड बाय मदन मोहन एंड रिटन बाय राजा मेहदी अली खान। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म का नाम ना पहले सिर्फ साया होने वाला था, लेकिन फिर जब ये गाना बना, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो ये मेरा साया जिस तरह से इस गाने में बोला गया है ना, वो इतना सुंदर साउंड कर रहा था कि इस फिल्म की टीम को लगा कि इस फिल्म का नाम मेरा साया होना चाहिए, तो नाम बदल दिया गया। चलिए नेक्स्ट गाना सुनते हैं जिसमें भी ऐसी ही कोई फीलिंग दी जा रही है कि आप जहां भी जाएंगे हमें ही पाएंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

1981 की फिल्म कुदरत का ये सुंदर गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान काफी बदसूरत से इंसिडेंट्स हुए थे, क्योंकि राजेश खन्ना साहब की सुपरस्टारडम उस टाइम डिक्लाइन पे थी, वो काफी अपसेट इनसिक्योर रहते थे। ऐसा सुनने में आता है कि विनोद खन्ना साहब, वो भी इस फिल्म में, तब कुर्बानी के बाद काफी हिट हो गए थे, लेकिन उनका ऐसे हिट होना राजेश खन्ना साहब को थोड़ा रास नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कुदरत फिल्म के LP रिकॉर्ड से विनोद खन्ना साहब की फोटोज थी प्रमोशन में, वो हटवा दी कि भाई मेरी फिल्म है, मेरी फोटो लगेगी। अभी क्या पता यार, सुपरस्टार होना और फिर सुपरस्टारडम का डिक्लाइन होना कैसा फील होता होगा। फिलहाल यहाँ पे फुल फील वाला सुंदर गाना सुनेंगे, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only

मैं ना जितेंद्र जी को जब भी देखती हूँ मेरे मन के बैकग्राउंड में एक डायलॉग चल जाता है, ओए मेरे गरम मसाले। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बिकॉज जब मैं छोटी थी आई थिंक मैंने उनकी पहली फिल्म जो देखी थी वो थी कारवां। हमारे घर में वीडियो कैसेट थी एंड मुझे उनपे ऐसे छोटा सा थोड़ा सा क्रश भी हो गया था, इतने हैंडसम लग रहे हैं वो इस फिल्म में। तो इन द फिल्म वो और अरुणा ईरानी एक ही कारवां में होते हैं, मतलब वो जो शहर शहर जाके तमाशा दिखाता है कारवां उसका पार्ट होते हैं। और अरुणा ईरानी इनको लाइक करती है, फ्लर्ट करती रहती है और इनको प्यार से गरम मसाला बुलाती है, ओए मेरे गरम मसाले। वैसे आपको पता है इसी 1971 की कारवां फिल्म के बाद अरुणा ईरानी जी को एज एन एक्टर एज अ डांसर सीरियसली लिया जाने लगा था। उनको फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला था। और इसमें जो उनके डांसेस थे, फिर चाहे दिलबर दिल से प्यारे वो गाना हो या ये वाला गाना हो जो हम सुनने वाले हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

0: वहीदा रहमान जी फिल्मों के सेट्स पे ना ज्यादा नहीं बोलती थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस वजह से कई बार डायरेक्टर्स के साथ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती थी, बिकॉज ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था रोल को लेकर, सीन को लेकर। कितने ऐसे डायरेक्टर्स थे जो बिना कहे उनकी बात समझ जाते थे या वो उनकी बात समझ जाती थी। सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: कम, बहुत कम। ज्यादातर डायरेक्टर्स ये कहते थे, भाई बात नहीं बनी, इसको और थोड़ा कुछ कीजिए। तो मैं पूछा करती थी, कुछ का क्या मतलब? ये जो कैरेक्टर है बहुत हार्श है, नहीं समझदार है, यानी प्रिटेंशियस है, नहीं क्या है? नहीं, ये सीन जैसा भी है कि उसको जरा आप ऊंचा करके कीजिए। मैंने कहा ऊंचा से मतलब थोड़ा, मतलब थोड़ा लाउड होना चाहिए। और मेरा बेसिक नेचर और मेरा कैरेक्टर प्ले करने का रवैया ज्यादातर यू नो अंडर प्ले करना, स्ट्रेन्ड एक्टिंग, तो उसमें जरा मुश्किल हुआ करती थी। एक गुरदत्त जी थे, फिर एक अशित सेन और विजय आनंद से मेरी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी। तो बहुत कम लोग मुझे मिले जो यू नो कि वो जो कह रहे मैं समझ जाऊँ, जो मैं कहना चाहती थी मेरे से यू नो अग्री करते।
0: वैसे देवानंद साहब के साथ भी इनकी बहुत जमती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
4: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

1981 की सुपर डुपर हिट फिल्म तेरे मेरे बीच में का ये गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये रति अग्निहोत्री जी की डेब्यू फिल्म थी, लेकिन इसमें हीरोइन के काम के लिए ना बहुत सारी एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया गया था, जिनमें से एक थी पद्मिनी कोल्हापुरी भी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि वो उस फिल्म की शूटिंग कर रही थी जिसका हम गाना सुनेंगे अभी, जमाने को दिखाना है। और क्या गाना है, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, शैलेंद्र सिंह की आवाज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

1977 की एक फिल्म है यही है जिंदगी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इसमें मेन लीड में है संजीव कुमार साहब और ये एनफ होना चाहिए फिल्म देखने के लिए। तो ओवरऑल फिल्म इतनी बढ़िया नहीं है, कुछ एक्टर्स हैं उनकी कास्टिंग इतनी ठीक नहीं है, लेकिन संजीव कुमार का काम पैसा वसूल है। उसमें वो एक ऐसे इंसान का रोल प्ले करते हैं जो ऊपर वाले में विश्वास नहीं रखता है, उसको अपनी काबिलियत, इंटेलिजेंस, अपनी मेहनत पे भरोसा है। वो गरीब है और उसको लगता है उसकी लाइफ में अगर पैसा आ गया तो वो मेहनत से और पैसे बढ़ा लेगा और खुश हो जाएगा, पर उसकी लाइफ में पैसे आने से पहले साक्षात भगवान आ जाते हैं, श्री कृष्ण उससे मिलने आते हैं। फिर इनकी लाइफ में कुछ पैसे आते हैं, ये मेहनत करके बहुत रईस हो जाते हैं, लेकिन क्या उनको वो खुशी मिलती है जो उनको लगता है कि पैसे आने के बाद मिलनी थी? दैट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। तो कभी ऐसे ही टाइम पास के लिए आप ये फिल्म देख सकते हैं, यही है जिंदगी। फिलहाल गाना सुनेंगे उस फिल्म का जिसमें परफॉर्मेंस के लिए संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। आंधी फिल्म, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

आपको पता है सुभाष कई साहब शत्रुघ्न सिन्हा साहब की वाइफ पूनम सिन्हा के राखी ब्रदर हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और 1970 से हैं। तो जब 1976 की फिल्म काली चरण की शूटिंग हो रही थी, उस टाइम सुभाष कई एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में थे। वो सिचुएशन ये थी कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब तब उनकी वाइफ जो तब उनकी गर्लफ्रेंड थी उनको भी डेट कर रहे थे, पूनम जी को, और रीना रॉय जी को भी डेट कर रहे थे जी। तो ये चीज सुभाष घई के लिए बड़ी डिफिकल्ट हो जाती थी, बिकॉज फिल्म के सेट पे वो रीना रॉय के साथ रहते थे। बताइए बड़ी बड़ी फिल्मों के पीछे क्या क्या कहानियां होती हैं, पता भी नहीं होता। फिलहाल इसी फिल्म का ये गाना सुनेंगे पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि आपका काम ही आपकी दुनिया बन गया है, बाहर आपकी कोई दुनिया ही नहीं है। फिर से सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आपके कलीग्स ही आपके दोस्त बन गए हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि वही आपका परिवार है शायद, क्योंकि परिवार वालों से ज्यादा तो अपने कलीग्स से मिलते हैं। एक इंटरव्यू में सुनिए माला सिन्हा जी ने क्या शेयर किया था कि क्यों फिल्म इंडस्ट्री के बाहर वो दोस्त वगैरह नहीं बना पाई।
1: हमको मौका कहाँ मिला कि हम बाहर के लोगों से मिले। जब पिक्चर हिट होती है, एक के बाद पिक्चर आती जाती है, आप काम करते जाते हो तो माहौल वही होता है। हमारा परिवार वही डायरेक्टर, वही प्रोड्यूसर, वही कलीग्स, हमारे जितने साथी वर्कर आर्टिस्ट, वही हमारे परिवार होते हैं। हमने एंजॉय बहुत किया, बहुत आई लाइक। हालांकि मैंने और चीजें बहुत मिस किया, मतलब सैक्रिफाइस त्यागना पड़ा, जैसे बाहरी दुनिया के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, स्कूल के दोस्त, अपने परिवार। भाई मेरे अपने कजिन सिस्टर से भी मिलने का मौका नहीं मिलता था मुझे, वही तो मेरे परिवार।
0: चलिए इसी बात पे माला सिन्हा जी पे पिक्चराइज्ड ये ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Pirani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा, ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2. इट्स हॉट.
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

लिरिसिस्ट SH बिहारी साहब के पास बहुत टैलेंट था, लेकिन किस्मत उनके साथ उतनी नहीं थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उन्होंने फिल्मों में गाने लिखना लेट 40s में शुरू किया, मिड 50s में उनके कुछ गाने हिट हुए, फिर मिड 60s में। इस बीच उनको काफी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। उनके करियर में चढ़ाव कम थे, उतार ज्यादा थे। 70s उनका काफी डल रहा। लेट 70s में उन्होंने एक एक्सीडेंट में अपना बेटा खो दिया। 19-20 साल का उनका बेटा रहा होगा तब। और फिर कुछ साल बाद अर्ली 80s में दूसरा बेटा भी एक एक्सीडेंट में नहीं रहा। ये बात उनकी डॉटर ने एक इंटरव्यू में शेयर की थी। 80s में करियर वाइज कुछ चीजें बेटर हुई। बिहारी साहब ने प्यार झुकता नहीं फिल्म भी लिखी और उसके गाने भी। ये फिल्म 1985 में रिलीज हुई, लेकिन 1987 में खुद बिहारी साहब नहीं रहे। हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। सच इज लाइफ। सोचिए ये गाना लिखते हुए जो हम अभी सुनेंगे वो क्या गो थ्रू कर रहे होंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Mirchi, fresh maal.
2: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि बिराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। रेडियो मिर्ची के साथ
1: 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: से है।
1: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: वक्त और जनरेशन के साथ खुद को बदलने से जिंदगी में कौन से नए फायदे खुलते हैं, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मैं एक कुछ दिन पहले मेरे एक कॉलीग की शादी थी, तो उसके लिए मैं चंडीगढ़ जा रहा था। उस फ्लाइट पे जब मैं बैठा था, मेरे पास एक भाई साहब थे, वो यूएस से आ रहे थे, वो चंडीगढ़ रहने वाले हैं। उनसे मिला, उनसे बातचीत होने लगी, तो मैं उनसे पूछ रहा था, ये लुक टू बी अबाउट 65-70, तो मैं उनसे जनरली बात कर रहा था। तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, पैसे तो बहुत कमा लिए, अब मैं अपना टाइम जो है वो डोनेट करता हूँ, बहुत सारे कॉजेज में काम करता हूँ। तो वॉलंटियरिंग की बात कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा बात करते हुए। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की, वो कहते हैं कि वॉलंटियर तो मैं करता हूँ, लेकिन मैं प्रिफर करता हूँ कि मैं अपना टाइम जो स्पेंड करूँ वो यंग लोगों के साथ करूँ। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? He says क्योंकि ज्यादातर मेरी जो उम्र के लोग हैं ना, जो हम उम्र हैं, वो यंग लोगों से भागते हैं। वो कहते हैं बहुत ज्ञान देते हैं, टाइम नहीं होता, चल रहा। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जब मैं यंग लोगों के साथ काम करता हूँ, मेरा दिमाग और शार्प होता है, क्योंकि उनके पास जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो नजरिया है दुनिया देखने का, वो बहुत अलग है। उससे मैं यंग फील करता हूँ
4: और सीखता भी हूँ। सम पीपल ऑलवेज वांट टू लर्न। बहुत अच्छी बात है,
3: और मुझे ये बात अच्छी लगी। और कहीं ना कहीं हर बार जो होता है, जो ओल्डर जनरेशन होती है ना, वो यंगर जनरेशन को बोलते हैं, अरे तुम लोगों ने काम तो हमने किया है, तुम लोग क्या बिजी रहते हो, बिजी तो हम रहते थे। बट द वे ही स्पोक, ही सेइंग यंग जनरेशन कीप्स मी ऑन माय टोस, आई लर्न न्यू थिंग्स, आई रिस्पेक्ट देम, मुझे मजा आता है उनके साथ। अगर ये नजरिया हम अपना लेना, तो हमारे पास भी बहुत कुछ सीखने को होगा।
4: वैसे ये वाला स्टेटमेंट हमें छोड़ देना चाहिए कि हमने इतना किया था, हमने इतना किया था। आई थिंक एवरी जनरेशन के चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं,
3: अलग होते हैं। बिल्कुल,
4: हो सकता है कि उनकी फिजिकली लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल हो, फाइनेंशियली कंफर्टेबल हो। आज की जनरेशन को जितना पीयर प्रेशर है,
3: बिल्कुल
4: किसी जनरेशन को मुझे नहीं लगता था। सोशल मीडिया एडवेंट के बाद
3: बहुत
4: कितना ज्यादा एक प्रेशर होता है। और व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एवरी जनरेशन के चैलेंजेस
3: अलग होते हैं,
4: अलग होते हैं। तो हम एक इसमें न जाएं, हम ये करते थे, हम वो करते थे। सी इफ यू सेइंग दिस इंस्पायर करने के लिए, तो वो अलग बात है। इंस्पायर भी जब हम करते हैं ना, तो वो बहुत एक सटल होता है, वो एक एक एक रेफरेंस के लेवल पर होता है। एक होता है कि हम पूरा
3: मेरा फ्रेंड कहता था ऐसे, मैं इंस्पायर नहीं हूँ, मैं एक्सपायर हो गया इसके बाद।
4: तो ये नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल स्टोरीज शेयर करने में मुझे तो विक्टिम मोड लगता है कई बार, कि हम ऐसे थे, हम ऐसे थे। आई फील एवरी जनरेशन हैज देयर शेयर ऑफ चैलेंजेस। और सेकेंडली मुझे लगता है, जो आप अपने अभी दोस्त के बारे में कह रहे थे, कम लोग होते हैं जो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। चेंज को एक्सेप्ट करना, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना, वो आपको हमेशा सिखाता है, आप डरते नहीं है। अभी क्यों कई लोग हैं जो यंग के साथ नहीं चलना चाहते, बिकॉज यू नो फ्लेक्सिबल नहीं है उनको, वो चेंज कंफर्टेबल नहीं लगता। अगर हम चेंज को एक्सेप्ट कर सके, तो हम किसी के साथ भी बहुत कंफर्टेबली रह सकते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए, इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: रिटायरमेंट के बाद आने वाले नेगेटिव थॉट्स को शांति और समझ से कैसे हैंडल करें? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, कभी कभी क्या होता है कि when you hit a particular age, specially उनके साथ मैंने देखा है जो रिटायर हो जाते हैं, उनका आइडेंटिटी लॉस हो जाता है, फियर ऑफ इररेलेवेंस होता है कि यार अब, क्योंकि 40-50 साल शायद आपने काम किया या 30-40 साल आपने काम किया, आपकी एक आइडेंटिटी बन गई थी, लोग आपको रिस्पेक्ट करते थे, आपसे बात करते थे, वो सडनली वो नहीं रहा। आपके जो फ्रेंड्स हैं दे माइट हैव पास्ड ऑन और यू नो दे आर नो लॉन्गर इन टच विद यू। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं अब, मुझे या मेरी किसी को जरूरत नहीं है, और वो जो थॉट है ना वो बहुत डिसएम्पावरिंग थॉट होता है। तो उस साइकिल से कैसे निकले?
4: पहली चीज तो ये कि अपने रोल से आइडेंटिफाई करना नहीं चाहिए। करते हैं लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, कोई 30 इयर्स 40 इयर्स आपने अगर कोई रोल प्ले किया, इसलिए आप कई बार देखिए कोई रिटायर भी हो जाएगा तो वो अपने परिचय में पहले ही बताएगा कि मैं ये करता था, अब रिटायर्ड हूँ, या अपने कार्ड भी बनाएगा तो उसमें एक्स बहुत छोटा होगा, वो एक्स पढ़ने में भी नहीं आएगा, यू नो समटाइम्स, क्योंकि वो लिखना तो है, बट वो सोचते हैं कि जो आपने वर्ड यूज की कि मुझे जो रिस्पेक्ट है वो तभी मिलेगी जब मैं बताऊंगा कि मैं इस ओहदे पर था या उस पोजीशन पर था या मैं करता था। नाउ अगेन हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि जो फर्स्ट रिस्पेक्ट है, माना आप एकदम, कई लोग प्रभावित हो जाते हैं इन टाइटल्स और रोल्स को देख करके, पर जो रिस्पेक्ट होती है, आप क्या चाहेंगे कि लोग आपको सिर्फ आपके रोल ओहदे पोजीशन के लिए रिस्पेक्ट करें या आपको रिस्पेक्ट करें? आपके रोल से अलग है। रोल एकदम चला जाएगा, रोल जाने के बाद आप थोड़ी ना कहीं चले गए, दैट आई की आइडेंटिटी तो अभी भी है ही ना। सो जब आप उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हो, देन पीपल रिस्पेक्ट यू फॉर हु यू आर, नॉट व्हाट यू डू। There's a difference ना, आप जो हैं का मतलब है आपका वैल्यू सिस्टम, आपका बिहेवियर, आपका कैरेक्टर, आपके प्रिंसिपल्स, आपका लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका। नहीं तो क्या हो सकता है, कोई आपको बाहर से रिस्पेक्ट दे सकता है, आपको लगेगा ये मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, देखो कुर्सी लेकर आया मेरे लिए, देखो इसने मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोला, और आपके जाते ही वो आपके बारे में गलत बातें करना शुरू कर देता है। ये ऐसे है, ये तो डांटते हैं, इनकी तो लैंग्वेज बहुत खराब है, ये तो हमारे से ठीक से बात भी नहीं करते हैं, तो वो आपको रिस्पेक्ट थोड़ी ना करते, हमें लगता है, पहले तो रिस्पेक्ट है क्या।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

थॉट। हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: इमोशनल इंडिपेंडेंस का असली मतलब क्या होता है और ये जिंदगी को कैसे स्ट्रांग बनाती है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कहीं ना कहीं आप जो सही कह रहे हैं कि भाई रोल से अपनी आइडेंटिटी नहीं बननी चाहिए, अगर वो नहीं भी बने तो क्या होता है कि जब आप रिटायर होते हैं सडनली एक खालीपन आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते आपके अचानक टूट गए। वो रिश्ते नहीं भी टूटे, अगर वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि आपसे वो टच में रहें जिनके साथ आप काम कर रहे थे, क्योंकि वो अभी भी व्यस्त हैं, वो विलीन हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और आप रिटायर हो गए। जब आप रिटायर हुए तो बहुत सारे लोगों ने आपके साथ टच में रहना छोड़ दिया, या हो सकता है 3-4 महीने में एक बार आपसे कॉल किया, बात बात की। शुरू में तो शायद बहुत रेगुलरली होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन 4-5 साल छोड़ देते हैं तो इतना रेगुलर टच नहीं होता। उस समय बहुत लोग खालीपन को महसूस करते हैं।
4: अगेन इमोशनल डिपेंडेंसी ना, ये तो होना ही है, ये तो होना ही है, चाहे वो वर्क प्लेस पर है चाहे घर में। आपके बच्चे बिजी हैं, आप फ्री हो गए हैं, आप रिटायर हो गए हैं, पर जिनके साथ आप काम कर रहे थे शायद अभी उनके रिटायर होने में 2-4 साल हैं, तो उनके पास उतना फ्री समय नहीं है, तो आप इमोशनली डिपेंडेंट है ना, तो वो डिपेंडेंसी भी तो नहीं हो सकती ना।
3: तो ऐसे में करना क्या चाहिए?
4: इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा कि भले वो नहीं भी समय हमारे साथ स्पेंड कर पा रहे हैं। जैसे हम फ्रेंड्स के लिए भी तो क्या कहते हैं कि फ्रेंड्स वो अच्छे हैं कि जिनको कॉल किया नहीं किया, मिल पाए नहीं मिल पाए, बट दे एक्सेप्ट मी द वे आई एम।
3: एब्सोल्युटली।
4: कई फ्रेंड्स होते ना, तुमने पूछा नहीं, बताया नहीं, बर्थडे पर कॉल नहीं किया, याद आ गई मेरी, तब कहते अरे ये तो बड़ा बंधन लगता है, बिकॉज यू आर इमोशनली डिपेंडेंट ऑन देम। आपको तब कुछ वैलिडेटेड फील होता है कि आपके बर्थडे पर 20 कॉल आए, उसमें से अगर कोई एक आध भूल गया सो यू फील लेस वैल्यूड, सो यू आर इमोशनली डिपेंडेंट ऑन देम टू मेक यू हैप्पी। इमोशनल इंडिपेंडेंस इज अंडरस्टैंडिंग कि वो अभी इतना मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, बट इट्स ओके, हम 5 मिनट भी बात करेंगे तो हम उस चीज को एंजॉय करेंगे, 5 घंटे टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, बट आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन देम, आई एम कम्फर्टेबल विद माई सेल्फ। सो वो अगेन हम बार बार उस पर आ रहे हैं कि सोच।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जब बच्चे पढ़ाई या जॉब के लिए घर से दूर चले जाते हैं तो पेरेंट्स उस खालीपन को पॉजिटिविटी में कैसे बदले, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, ये जो आप कह रहे हैं, चलिए प्रोफेशनल स्पेस से कट ऑफ करके इंडिपेंडेंट सोच करना शायद थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन एक होता है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। वो होता है बच्चों को हमने बड़ा किया, हमारे साथ रह रहे थे, उनका पाला पोसा, वो साथ में उनका एजुकेशन पे ध्यान दिया, शायद उनको सेटल किया करियर कर, अब वो शायद या तो घर छोड़ के चले गए, किसी देश में चले गए, शादी होके बाहर शिफ्ट हो गए, जो भी है वो अपने करियर में व्यस्त हो गए। सडनली जो हरा भरा घर था ना, वो खाली हो जाता है। उसमें कहीं ना कहीं, चलिए आपने प्रोफेशनल टाइज अगर आपने कहा कोई बात नहीं, जिंदगी भर का साथ थोड़ी ना था, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा लगता है कि एक ही घर में थे, एक ही छत में रह रहे थे, साथ में हम खाए पिए, साथ में इतना, और जब वो चले जाते हैं तो वो जो खालीपन आता है ना, वो काटने को दौड़ता है।
4: पर वो भी तो होना ही है ना, सोच के देखे ना एक बार कि ये अगर आपने उन बच्चों को पढ़ाया, आज उनको विदेश में नौकरी मिलती है, उनको जाना पड़ता है, वो बच्चे कई बार कहते भी आप हमारे साथ आ जाओ, तो भी हम कई बार जाना नहीं चाहते क्योंकि हम अपने उसके अंदर बहुत कंफर्टेबल होते हैं। अब जो एम्प्टीनेस है आप बार बार कह रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताएं कि
5: यू आर लिसनिंग टू 103.3 एफएम एचडी2 डब्ल्यूपीआरबी प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी रेडियो मिर्ची।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: ओल्ड एज में रिग्रेट को बर्डन नहीं लर्निंग बनाने का तरीका क्या है, आइए इसका सॉल्यूशन जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर श्रेया, एक चीज के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं लेकिन बहुत हकीकत है कि ज्यादातर जब आप लोगों से बात करें वो कहते हैं एक फेयर ऑफ रिग्रेट होता है, कि यार उस समय मैंने अगर वो कर लिया होता या अगर मैंने वो ऑफर ले ली होती, यार मुझे वो करना चाहिए था। ये कई बार, चाहे वो अंकल से बात करो, आंटी से बात करो, बहुत लोगों से, जब आप बुजुर्ग एज के श्रेणी के लोगों से बात करते हैं तो रिग्रेट बहुत होता है कई चीजों का। कई लोगों में नहीं होता लेकिन आमतौर पर देखते हैं, ज्यादातर लोगों से जब बात करते हैं तो रिग्रेट बहुत होता है कि वो कर लेना चाहिए था या वो नहीं करना चाहिए था। अब सीख है तो एक्सपीरियंस का सबसे ब्यूटीफुल जो है वो चीज है कि पास्ट में सब कुछ लगता है कि यार ये सही करना चाहिए था, हमने नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे केसेस में हाउ डू यू हैंडल, बिकॉज कहीं ना कहीं आप पास्ट में ही रुके, वो जो आपने कहा था ना BIP, वो पी जो पास्ट में हम रुके हुए हैं।
4: वन लाइन दैट आई रियली लाइक एंड आई यूज इट फॉर माय सेल्फ आल्सो बहुत ज्यादा, व्हेन वी नो बेटर वी डू बेटर। मुझे ये लाइन अच्छी लगती है कि जब हमें समझ आ जाता है तो हम करते हैं। सी, कई चीजों का रिग्रेट उस समय पर मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा होता है कि ये नहीं करना चाहिए या ये करना चाहिए, दोनों केसेस में। कभी कभी होता है नहीं करना चाहिए, आई हैव माई रीजंस क्यों नहीं करना चाहिए, और कभी कभी करना चाहिए। कई चीजों का रिग्रेट करने का भी होता है ना।
3: हाँ, बिल्कुल। ये
4: नहीं करने का भी रिग्रेट होता है तो करने का भी रिग्रेट होता है। आफ्टर सम टाइम आपको रियलाइज होता है दैट इट वाज अ मिस्टेक। आई थिंक अब इट इज ओके,
3: हो गया।
4: इग्नोरेंस इज नॉट अ क्राइम ना, ऐसा भी नहीं है। व्हेन यू नो बेटर यू डू बेटर। अब हर चीज को भी आप रिग्रेट नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, आजकल कई बार ऐसा होता है आपको अपना पैशन ढूंढना चाहिए, आपको वही करना चाहिए जो आपको ठीक लगता है, आपको वही, आपको रिग्रेट होगा। आई थिंक कभी कभी आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी डिसीजन लेने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, उनको आपकी जरूरत है, फाइनेंशियल आप एक ही अर्निंग हैंड है, उनको जरूरत है, आप इस समय अपने पैशन को फॉलो नहीं कर सकते। आप कुछ कर भी रहे हैं पर साथ साथ अपने पैशन को भी आपने ऐसा नहीं छोड़ दिया है, बट आपने जैसे उसको होल्ड पे रखा है कि मुझे 5-10 ईयर्स पहले ये करना है, थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल होना है। सो आई थिंक देयर इज नो रिग्रेट। यू मे स्टार्ट समथिंग एट 40 जो प्रोबेबली समबडी स्टार्टेड एट 20, एंड देन इवन आफ्टर स्टार्टिंग एट 40 यू आर डूइंग वेरी वेल। आप रिग्रेट करें मुझे 20 में ये कर लेना चाहिए था, ऐसा नहीं होता। एट दैट मोमेंट आप जो कर रहे थे आपको वो राइट लग रहा था,
3: इसीलिए आपने किया,
4: इसीलिए आपने किया।
3: सो मूव ऑन,
4: मूव ऑन।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
2: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: इश्क कदे धर्म जात जां सरहद्दां वेख के नहीं हुंदा।
6: चढ़दे पंजाब बॉर्डर कबूतर नहीं टप सकदा, ते तू किस तरह टपा है?
5: अते एक वार इश्क हो जावे ता आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
7: बागी ते आशिक हद्दां सरहद्दां टप ही आउंदे ने।
5: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा।
8: रांझे दित्ते 12 साल ते मैं दित्ती आ जिंदगी।
5: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नू। फिल्म इश्कनामा।
9: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पिडाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: HG Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अपने लिए लिए गए डिसीजंस पर गिल्ट या रिग्रेट क्यों नहीं होना चाहिए और उन्हें स्ट्रेंथ कैसे बनाएं? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: उम्र बिना रुके सफर कर रही है।
4: हाँ।
3: उम्र बिना रुके सफर कर रही है और हम अपने ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हैं
4: जी।
3: तो हमको मूव ऑन करना बहुत जरूरी
4: है। रिग्रेट नहीं होना चाहिए, और वो कभी कभी हमने कोई ख्वाहिश छोड़ी भी होती है और कहीं कहते नहीं छोड़नी चाहिए। देखो, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमने कोई ख्वाहिश इसलिए छोड़ी होती है क्योंकि उसमें किसी की खुशी होती है और उनकी खुशी में हमारी खुशी होती है।
3: बिल्कुल बिल्कुल। और तो उस समय सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, हमने वो चूज किया।
4: मदर, शी वाज वर्किंग एंड शी वाज डूइंग वेरी वेरी वेल, वेरी वेल। उसने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, बहुत अच्छी वो कंपनी में लगी, देन शी गॉट मैरिड, हस्बैंड बहुत सपोर्टिव था, दे वर बोथ डूइंग वेरी वेल, एंड देन दे हैड अ किड। वो बच्चे को ऑटिज्म था। ऑटिज्म होने के कारण उस बच्चे को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी, बहुत ज्यादा केयर की जरूरत थी। सो शी डिसाइडेड कि आई विल लीव द जॉब। तो कितने लोगों ने उनको कहा आपको रिग्रेट नहीं होता, आप इतने थे। उसने कहा नहीं, मैंने इन दैट मोमेंट मुझे वो जरूरी लगा, मैंने ठीक है, मैंने मेहनत करी थी, मैं बहुत वर्क अच्छा कर रही थी, आई वॉज पेड वेरी वेल और मैं कंटिन्यू करती, सो आई कुड हैव डन वेरी वेरी वेल। बट उस मोमेंट में क्योंकि उस बच्चे को एक स्पेशल नीड चाइल्ड था, सो शी सेड नहीं, आई हैव नो रिग्रेट्स। पीपल फील दैट यू नो आप रिग्रेट करते होंगे, उस समय आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। सो आई थिंक द डिसीजंस दैट वी टेक इन आवर लाइव्स, एज लॉन्ग एज वी आर एट पीस विद दैट, इट्स ओके। हमें पीस होना जरूरी है।
3: बिल्कुल सही कह रही है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
3: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
4: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islington, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
6: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
7: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit AIMS. education.edu.
0: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओल्ड एज में फियर ऑफ डेथ क्यों आता है और इस डर को शांति में कैसे बदलें? आइए अच्छे से जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: फियर ऑफ रिग्रेट के साथ एक फियर होता है फियर ऑफ डेथ। ओके, तो कहीं ना कहीं हर इंसान कभी ना कभी ये सोचता है कि यार मैं कब मर जाऊंगा मुझे पता नहीं, तो ये सब हो जाना चाहिए। बट अलग अलग तरीके से फियर ऑफ डेथ आता है। कुछ लोगों को फियर ऑफ डेथ एवरी डे होता है कि मैं कल मर गया, तो कुछ होते हैं कि भैया इस उम्र तक ये कर लेना चाहिए था, और कुछ लोगों को एक नॉइंग फियर रहता है वो जिंदगी भर चलता है उनसे। तो मुक्ति भवन बोल के बहुत प्यारी सी मूवी आई थी, उसमें ये बहुत खूबसूरती से उन्होंने हैंडल किया है। तो उस मूवी को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मरना तय है हर इंसान का, ये तो सबको पता है, लेकिन आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं ये आपके हाथ में। तो फियर ऑफ डेथ से बड़ी हकीकत कुछ नहीं, अगर आप पैदा हुए हैं तो आप मरेंगे। बट इसके बीच में ऐसा क्यों होता है कि एज यू गेट ओल्डर, बिकॉज आप क्लोजर हैं अपने एंड डेट के, हमें इंस्टेड ऑफ लिविंग डाइंग के बारे में ज्यादा ख्याल आता है।
4: मी नॉट बी फॉर एवरीवन, लेकिन अगर आपने उस जो आपने का जीवन की सच्चाई है अगर उसको स्वीकार नहीं किया, जैसे कई चीजें सच्चाई होती हैं पर हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहते क्योंकि क्यों नहीं करना चाहते वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम समझो उसको, ऐसा नहीं है कि ये चीज तो हम सबको पता होता है कि ये एक दिन शरीर छूटना है। आप ऐसे भी जीवन जी सकते हैं कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, तो आप जीवन जीते हैं और जिस दिन भी छूट जाएगा ठीक है, इट इज ओके। वैसे तो समझो, देखो जीवन जीने का तरीका क्या होता है, आपने अभी कहा था कि इट इज हाउ यू लिव लाइफ। तो अगर आपको पता चले फॉर एग्जाम्पल ऐसे कि आज हमारा लास्ट डे है, कल है ही नहीं, शरीर छूट जाएगा, तो आप क्या करेंगे आज?
3: मैं तो सबको फोन करके सॉरी बोलूंगा यार, अगर कुछ गलती की तो माफ कर दो, और जितनी खुशियां हो सके बांट दूंगा। कोशिश यही करूंगा कि भाई खुशी खुशी जाऊं यार।
4: तो सॉरी बोलेंगे, खुशी खुशी जाएंगे, और क्या करेंगे?
3: और क्या कर सकता हूँ,
4: सोचे थोड़ा सा।
3: सबके करीबी हैं उसको बुला लूंगा यार।
4: जो करीबी हैं उनको बुलाएंगे,
3: बात करते
4: उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जो भी परिवार वाले हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अपने का सॉरी बोल देंगे, किसी अपोलोजाइज हम लोग कर भी लेते हैं। और दोनों रीति से होता है, हमें किसी को कहना है
3: माफ भी कर देंगे,
4: माफ भी कर देते हैं, दोनों कर देते हैं।
3: भर भर के आई लव यू बोलूंगा सबको,
4: भर भर के आई लव यू बोलेंगे, और क्या करेंगे?
3: और क्या, बस यही जिंदगी है, छोटी सी है, और क्या करना है?
4: यही तो रोज करना है। अब छूट जाए शरीर तो छूट जाए, जिस दिन भी छूटना है। You know, the moment we think about that, we know how to live.
3: Very nice. Very
4: आपने ये नहीं कहा मैं बहुत धन कमाऊंगा, आज का दिन तो मैं सारा दिन ऑफिस में बैठा रहूंगा, मैं और धन कमाऊंगा। धन becomes last priority उस समय पर। रिश्ते इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पीस में बहुत धन कमाऊंगा, आज का दिन तो मैं सारा दिन ऑफिस में बैठा रहूंगा, मैं और धन कमाऊंगा। धन becomes last priority उस समय पर। रिश्ते इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया सिस्टर। गुड मॉर्निंग। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने गुस्से में एक दूसरे को कुछ बोल दिया। कुछ मैंने भी गलत बोल दिया, कुछ उसने भी गलत बोल दिया। वो हर्ट हो गई है और मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। किसी और के फोन से किसी तरह उससे बात हुई तो बोलती है कि एक साल वेट करो। अभी हम दोनों अलग रह रहे हैं। मेरा घर टूटने से मैं बचा सकूं, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? प्लीज हेल्प मी।
3: इसीलिए हम कई बार कहते हैं, अगर गुस्सा आ भी जाए ना, बोलना नहीं चाहिए। बोलने में क्या होता है, आपने फिर रियलाइज किया, आपने अपोलोजाइज भी कर लिया। सामने वाला जब बहुत कमजोर होता है तो उसको पकड़ लेता है, रिपीट करता रहता है, हर्ट क्रिएट कर लेता है, ब्लेम आपको करता है। एक्चुअली उस व्यक्ति ने तो एक बार कहा, फिर सॉरी भी कह दिया, तो बहुत ज्यादा मेजर मिस्टेक उसकी नहीं है। पर अगर कोई इमोशनली वीक है तो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाता है। वही चीज रिपीट करता रहता और जख्म बना लेता है। अब उन्होंने जख्म बना लिया, आपने सॉरी भी कह दिया। अब हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि उनके जख्म, हर जख्म हील होता ही है। कोई समझ से हील होता है, कोई समय से हील होता है।
2: क्या बात, बहुत बढ़िया। कोई नॉलेज से, कोई टाइम से,
3: होना तो समझ से चाहिए। ये क्या बात हुई कि एक साल वेट करो? जो चीज एक साल में ठीक करनी है वो एक सेकंड में भी ठीक हो सकती है। एक साल में तो वो जख्म और गहरा भी हो सकता है, लेकिन अभी वो उनके ऊपर है। समझ तो क्या कहती है, मेरी साड़ी पे दाग लगा, मैं एक साल बाद थोड़ी ना धोऊंगी। दाग लगा है ना, तो हम तो चाय भी कप रख करके कहेंगे पहले धोए फिर पियेंगे, नहीं तो ये गहरा हो जाएगा।
2: बिल्कुल।
3: तो समझदार तो क्या करेगा, अच्छा हो गया ना, फुल स्टॉप। मैंने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, फुल स्टॉप। बात करना शुरू करो, गांठ को तोड़ करके फेंको। लेकिन अगर समझ नहीं है तो समय हीलिंग करता है। टाइम इज द बेस्ट हीलर कहते हैं। टाइम हीलिंग कैसे करता है, वो चीज मर्ज होने लग जाती है। न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू सीन्स लाइफ की होती है, तो वो पीछे वाली का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं उनके लिए। आप उनको अच्छा वाइब्रेशन भेज सकते हैं। आप परमात्मा से पॉजिटिव वाइब्रेशन लेकर के आप उनको सेंड कर सकते हैं, जो उनकी हीलिंग फास्ट करेगा। तो आप डेडिकेटेड टाइम फिक्स करें, 10 मिनट्स 15 मिनट्स। आप मेडिटेशन में बैठे, उस मेडिटेशन में आप बोलें कि मैंने आपको दुख दिया, मेरा भाव नहीं था, आई एम वेरी सॉरी। अब मैं परमात्मा से हीलिंग एनर्जी लेकर आपको भेजता हूँ, क्योंकि मेरी भावना है कि आप खुश रहे।
2: क्या बात, बहुत बढ़िया।
3: मेरे लिए आपकी खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बस अभी इतना ही चाहता हूँ कि आप खुश रहें, ये मेरी अंदर की शुभ भावना है। मॉर्निंग इवनिंग आप ये करते जाए, आपका वाइब्रेशन उनको हील करेगा। और वो हीलिंग हो जाएगी तो वो जितना समय लगना उससे बहुत कम समय में वो ठीक हो जाएंगे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया। ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Priscilla, it's hot.
1: गुड मॉर्निंग माई फेवरेट ह्यूमन, वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पर कॉफी ऑप्शनल है लेकिन हंसी बिल्कुल कंपलसरी है। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और अगले कुछ घंटों के लिए तुम्हारी मॉर्निंग का अनऑफिशियल सॉफ्टवेयर अपडेट बन गई हूँ। थोड़ा सा बॉलीवुड, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया एंड होपफुली इतना सारा डोपामाइन कि ऑफिस की आज की मीटिंग्स भी बेरेबल लगने लगेगी। इंडिया में इस टाइम पर मम्मी पूछ रही होती है, बेटा नाश्ता किया? और यहाँ पर जब रिलेटिव्स फोन लगाते तो पूछते, बेटा तुम्हारे यहाँ तो रात हो रही होगी ना? लेकिन अभी रात नहीं बल्कि सुबह हो रही है मामू, तो बकल अप। अब तुम चाहे ट्रैफिक में हो, सबवे में हो, या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, या फिर परौंठे बनाने की तैयारी कर रहे हो, या फिर अभी तक अपने जैमीज में बेड में बुरीटो बनकर बैठे हुए हो, आज का शो शुरू हो चुका है जहाँ पर होने वाला है एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड फन फैक्ट्स, गुड वाइब्स एंड अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स एंड बहुत सारी यहाँ वहाँ की बातें। एंड ऑफ कोर्स मैं होने वाली हूँ विद अ लॉट ऑफ मिर्ची दैट बैंगर्स। फटाक से मुझे फॉलो कर लो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: वैसे तो टाइम ट्रैवल का टिकट फ्री में नहीं मिलता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हर रोज लेकर आती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है प्रिसिला और लेट्स फाइंड आउट कि आज के दिन हिस्ट्री में क्या हुआ था। 1588 में स्पैनिश अर्मारा पहली बार इंग्लैंड के कोस्ट के पास देखी गई थी। 1947 में ENIAC यानी कि ENIAC दुनिया के अर्लिएस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स में से एक अपने नए होम में स्विच ऑन हुआ था। और देखो, उस जमाने का कंप्यूटर पूरा रूम ले लेता था, आज फोन पॉकेट में आ जाता है। 1957 में बनी IAEA, फिर 1958 में NASA ऑफिशियली लॉन्च हुई, एक साल एटम्स, अगले साल एस्ट्रोनॉट, व्हाट एन अपग्रेड। 1954 में द फेलोशिप ऑफ द रिंग पब्लिश हुई। तो अगर आज भी तुम सेकंड ब्रेकफास्ट के फैन हो, थैंक यू टोल्किन। 1981 में दुनिया ने देखी फेरी टेल रॉयल वेडिंग प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना स्पेंसर की। अराउंड 750 मिलियन लोग देख रहे थे। आज होता तो सबसे पहले इंस्टाग्राम पर कमेंट्स आते फर्स्ट, या फिर हु एल्स इज वॉचिंग फ्रॉम न्यू जर्सी। और 1987 में साइन हुआ इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड, साउथ एशिया के हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक चैप्टर। वैसे हिस्ट्री के और फन नगेट्स और बैक स्टेज मस्ती के लिए तो मुझे फॉलो कर सकते हो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
4: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
6: सिर्फ हैप्पी फ्रेंडशिप डे कह के काम मत चलाओ। गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन। ज्योत्सना एंड तरुण शर्मा ऑफ कल्टीवेट टैलेंट्स अनलिमिटेड प्रेजेंट दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0। लाइव बैंड एंड बॉलीवुड सिंगर्स, शायरी और नॉन स्टॉप ओपन डांस फ्लो।
7: एंड द बेस्ट पार्ट, सिर्फ $65 में 3-course डिनर और ढेर सारी मस्ती। फ्राइडे ऑगस्ट 7th 7 PM एट रॉयल अल्बर्ट पैलेस, न्यू जर्सी। टिकट्स अवेलेबल ऑन sulekha.com और कॉल 7322972409।
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
6: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
6: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: अच्छा, आज का एक चैलेंज है, फोन अनलॉक करने से पहले गेस करो इंडिया के मेडल कितने हो गए हैं एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। गुड मॉर्निंग, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग। सबसे पहले मेडल टेबल पर चलते हैं।
2: मिर्ची वॉच इट।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया अभी भी लीडर बोर्ड पर फुल डोमिनेशन मोड में है। कनाडा सेकंड पे पहुंच चुका है, इंग्लैंड थर्ड पर, और अपना इंडिया, हमारा इंडिया नाइन्थ पोजीशन पर है विथ 12 मेडल्स सो फार, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, 7 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज हैं। वैसे अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। और आज का बिगेस्ट हाई फाई जाता है गुलवीर सिंह को। गुलवीर ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन एवर टू विन अ कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल इन द मेन्स 10,000 मीटर्स, और वो भी सिल्वर मेडल। इमेजिन 10,000 मीटर्स। मैं तो ग्रोसरी स्टोर में 2 एक्स्ट्रा आइल चल लूं तो भाई मेरी घड़ी मुझसे पूछने लगती है, आर यू ओके बेबी। इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट भी कमाल कर रहे हैं। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता है और शर्मिला धनकर ने पैरा शॉट में तिरंगा बुलंद किया है। साथ ही वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स और पैरा स्पोर्ट्स में हमारे एथलीट्स जो है वो मेडल लेकर इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। तो फिलहाल अगर ट्रैफिक में फंसे हुए ऑफिस जाते टाइम एक बार दिल से बोलो कम ऑन इंडिया। हर मेडल के पीछे पता सालों की ट्रेनिंग होती है, सालों की मेहनत होती है, और उससे भी ज्यादा होता है एक देसी डिटर्मिनेशन। चलो इसी नोट पर अब मिलते हैं ऑनलाइन। बोले तो मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन सोशल मीडिया, दैट्स इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक रीड रोड, इजलिन।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, assisting first time home buyers, also offering zero closing cost refinance option. For more information, call 732-339-3155. Log on to lionmtg.com.
6: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ। और चलो देखते हैं आज का वेदर मून स्विंग के किस लेवल पर पहुंचा है। अभी फिलहाल टेम्परेचर है 69 डिग्री फारेनहाइट और स्काइज मोस्टली सनी दिखाई दे रहे हैं। मतलब इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए लाइटिंग भी मस्त है और मूड भी मस्त है। लेट मॉर्निंग अराउंड 11 बजे से 1 बजे तक थोड़े पातली क्लाउडी सीन्स रहने वाले हैं, लेकिन शाम के 5 बजे के आसपास रेन अपनी अटेंडेंस लगा सकती है। तो ऑफिस से निकलते वक्त एक छोटा सा अम्ब्रेला या फिर रेन जैकेट कार में रख लेना। फ्यूचर यू विल से थैंक यू। आज का टेम्परेचर रहेगा 68 से लेकर 83 डिग्री फारेनहाइट के बीच में और फील्स लाइक भी ऑलमोस्ट वही रहने वाला है 69 से 83 डिग्री फारेनहाइट के बीच में। और पिछले 24 घंटों में हुई 22 मिलीमीटर्स की बारिश, लेकिन अगले 24 आवर्स में फोरकास्ट में सिर्फ 3 मिलीमीटर्स की बरसात है। मतलब वेदर ने कल पूरी पिक्चर दिखा दी और आज सिर्फ टीजर रिलीज करने वाला है। और गुड न्यूज ये है कि आज का हाई ऑलमोस्ट कल जैसा ही है। कल 81 डिग्री फारेनहाइट था, आज अराउंड 83 डिग्री फारेनहाइट रहने वाला है। तो कोई शॉकिंग प्लॉट ट्विस्ट नहीं आज के वातावरण में, लेकिन तुम अपना परफॉर्मेंस परफेक्ट रखना, लेयर के प्लेयर बनना, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड बाहर जाते वक्त वेयर योर एसपीएफ 50++++ एंड ऑफ कोर्स कीप मिर्ची ऑन विथ यू। मैं बोले तो प्रिसिला तुम्हारे साथ में हूँ ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। फॉलो करो मुझे, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
2: भाई

0: भाई रिवर्स में क्या कुछ स्टोरी सुना, स्टार्टिंग से सुना। भाभी को घुमाने के लिए किधर लेके गया?
1: अरे किधर मत पूछ, ये पूछ किस में ले गया, किस में?
0: किस में भाई?
1: अरे किसिंग कार में यार।
0: ए भाई साइड कार सुना, कलाकार सुना, बेकार सुना, डकार भी सुना, किसिंग कार क्या होता है?
1: अरे जिसमें किस करते हैं यार।

0: हाँ ड्राइवर ने मिरर में देखा रहेंगे कैसा मैनेज किया।
1: अरे ड्राइवर को मैंने 100 का नोट दिखाया, उसको सूसु करने का आइडिया तब आया।
0: अरे भाई तू तो जीनियस है, फिर क्या हुआ?
1: कभी चूमती इधर कभी चूमती उधर, अरे बोले मेरा मुन्ना इतने साल थे के थर।
0: ऐसा हो गया भाई।

0: घुमाया
1: अंडर लगा वो
0: शेरन की रोर वो लपकी मेरी ओर फिर शेर को मैं बोला ये मामू वंस मोर
1: हाला भाई शेर

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: देखो अगर तुम्हारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह सुबह ब्रेकिंग न्यूज तुम्हें मिलती है ना तो तुम्हें ये सुनना बहुत जरूरी है। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स और अब मैं तुम्हें अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स देने वाली हूँ। सबसे पहले अमेरिका में एक प्रपोज्ड सैंक्शंस बिल को लेकर डिस्कशन गर्म है। यूएस सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटॉल ने कहा है कि प्रपोज्ड 100% टैरिफ प्रोविजंस का फोकस इंडिया और चाइना पर है, स्पेसिफिकली रशियन क्रूड ऑयल परचेजेस के कॉन्टेक्स्ट में। अभी ये पॉलिटिकल और लेजिस्लेटिव डिस्कशन का हिस्सा है तो देखना यह होगा कि आगे क्या डेवलपमेंट्स आती हैं। नंबर टू पर दिल्ली पुलिस ने अलेजेडली अब्यूजिव ऑनलाइन कॉन्टेंट टारगेटिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के संबंध में FIR रजिस्टर की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से कुछ पोस्ट्स रिमूव या डिसेबल करने और उनसे रिलेटेड अकाउंट्स की डिटेल्स मांगे गए हैं। इन्वेस्टिगेशन फिलहाल जारी है और आगे के अपडेट्स का इंतजार रहेगा। एंड फाइनली नंबर थ्री पर क्रिकेट से, सिर्फ 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट वर्ल्ड को फिर इम्प्रेस कर दिया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I सीरीज में धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने ICC बैटिंग रैंकिंग्स में 230 प्लेसेस की जंप मारी है और अब 48th रैंक पर पहुंच गए हैं। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 विद मी प्रिसिला ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। यू कैन कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: है मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरुदेव।
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
6: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
8: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
9: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
8: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसला, सुन रहे तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। एंड स्पोर्ट्स वर्ल्ड से आ रही है एक खबर जो सिर्फ फुटबॉल नहीं बल्कि बिजनेस को भी ब्लॉकबस्टर स्टोरी दे सकती है। तो सीन कुछ ऐसा है कि फीफा एक नई कंपनी बना रहा है, फीफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज, जो फ्यूचर वर्ल्ड कप्स और दूसरे टूर्नामेंट्स के कमर्शियल और इवेंट ऑपरेशंस हैंडल करेगी। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, रिपोर्ट्स के हिसाब से फीफा इस नई कंपनी का 20% तक स्टेक बेचने का सोच रहा है। इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है $20 billion और अगर डील होती है तो अराउंड $4.2 billion रेज हो सकते हैं। टेंशन मत लो, फीफा ने बोला है कि कंट्रोल उनके पास ही रहने वाला है। लेकिन फुटबॉल में ड्रामा सिर्फ 90 मिनट्स तक थोड़ी होता है, बल्कि यूईएफए ने इस प्रपोजल पर कंसर्न्स रेज किए हैं। उनका कहना है कि ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस और फुटबॉल के फ्यूचर कमर्शियल डायरेक्शन को लेकर और क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब कि ट्रांसफर विंडो के बाद अब बोर्ड रूम विंडो भी फुल एक्टिव हो चुकी है। वैसे हम फैंस तो बस इतना चाहते हैं कि मैच टाइम पर हो, वीएआर कम कंफ्यूज करे और हमारी फेवरेट टीम जो है वो ज्यादा से ज्यादा गोल्स मारे। बाकी बिलियन डॉलर मीटिंग उनको मुबारक हो, या फिर तुमको भी सेक्स खरीदने हैं। टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। डीएम करो मुझे इंस्टा और एक्स पे, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, और व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Izzelin, New Jersey. Conditions apply.
5: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा।
6: चढ़दे पंजाब बार्डर कबूतर नहीं टप सकदा, ते तू किस तरह टप आया।
5: अते एक वार इश्क हो जावे तां आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
7: बागी ते आशिक हदां सरहदां टप ही आउंदे ने।
5: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा।
8: रांझे दित्ते 12 साल ते मैं दित्ती आ जिंदगी।
5: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज़ गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नूं। फिल्म इश्कनामा।
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
12: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
12: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
13: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: A very very happy birthday to everyone celebrating today. All the birthday babies wali bachcha party. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Aur agar aaj tumhara happy birthday hai to officially aaj ka din tumhare naam hai. And guess what? Tumhare saath aaj kuch famous log bhi apna birthday celebrate kar rahe hain. Jaise ki sabse pehle Bollywood se Sanjay Dutt, jinhone hame Munna Bhai jaise iconic characters diye hain, unka bhi aaj happy wala birthday hai. Jadoo ki jhappi to banti hai aaj ke din. और अगर फॉर्मूला वन के फैन हो तुम तो टू टाइम वर्ल्ड चैंपियन फर्नांडो अलोंसो भी आज ही के दिन बर्थडे क्लब में शामिल हो चुके हैं. सिटकॉम लवर्स, दिस वन्स फॉर यू. जॉश रैडनर यानी कि टेड मोस्बी फ्रॉम हाउ आई मेट योर मदर भी आज ही आए थे इस धरती पर. और इंडिया के लेजेंडरी इंडस्ट्रियलिस्ट और एविएशन पायनियर JRD टाटा भी आज ही के दिन प्रकट हुए थे. एविएशन पायनियर, विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट और प्रूफ कि स्काई लिटरली इजंट द लिमिट. तो अगर आज तुम कैंडल्स ब्लो कर रहे हो फुल ऑन फ्रेंड्स के साथ या फिर क्वाइटली सिर्फ अपना फेवरेट डिजर्ट एंजॉय करने वाले हो अकेले में, ये याद रखना ये जस्ट अ नंबर और मैच्योरिटी वो तो वैसे भी लाइफ का ऑप्शनल फीचर है. मिर्ची मॉर्निंग्स पर मेरे यानी कि प्रिसिला की तरफ से तुम्हें ढेर सारी बधाइयां फॉर योर बर्थडे, ढेर सारी खुशियां तुम्हारी लाइफ में, अच्छी हेल्थ हो, सक्सेस हो और बहुत सारी हंसी की विशेस मैं तुम्हें देती हूँ. हैव एन अमेजिंग ईयर अहेड. फिलहाल हम कुछ चलाएंगे मिर्चीदार बैंगर्स ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस on Instagram and X. That is MIRCHIPRIS. You can send in your birthday shout outs for yourself or your friend or even send me your cake pictures. WhatsApp ka number note karo 90336 47200. And right now, stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Izzilin, New Jersey. Conditions apply.
6: सिर्फ हैप्पी फ्रेंडशिप डे कहके काम मत चलाओ। गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन। ज्योत सिन्हा एंड तरुण शर्मा ऑफ कल्टीवेट टैलेंट्स अनलिमिटेड प्रेजेंट दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0। लाइव बैंड एंड बॉलीवुड सिंगर्स, शायरी और नॉन स्टॉप ओपन डांस फ्लो।
4: एंड द बेस्ट पार्ट, सिर्फ $65 में 3-course डिनर और ढेर सारी मस्ती। फ्राइडे ऑगस्ट 7th 7 PM एट रॉयल अल्बर्ट पैलेस, न्यू जर्सी। टिकट्स अवेलेबल ऑन sulekha.com और कॉल 7329972409।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hello, ending the second hour of Mirchi Mornings with a bang. यानी कि Mirchi Mornings पर आने वाली है अब Gold Rate Update. मेरा नाम है Priscilla.
2: Raj was wishing everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,020. $4,020 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं. और इस साल के बिगनिंग में गोल्ड $5,600 पर ट्राउंस पीक टच कर चुका है. आज करेक्शन के साथ $4,020 पर ट्राउंस. डेफिनेटली एंट्री पॉइंट पड़ती है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए. 1 ounce, 10 ounce, 100 ग्राम्स, किलो बार्स, पैम्प सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बार्स में इन्वेस्ट करने के लिए राज ज्वेल्स की टीम के साथ कनेक्ट करें. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
1: एंड देयर यू हैव इट. मिर्ची मॉर्निंग्स पर सुनी तुमने एक्सक्लूसिव गोल्ड रेट अपडेट With me, Priscilla. Of course, follow me Insta and X पर. मेरा handle है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp का number है 9033 Mirchi, that's 9033647244. For more such updates, stay tuned and stay hot.
0: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, good morning. मेरा नाम है प्रिसिला और ये है मिर्ची आवर का 3, जहां पर तुम्हें मिलती है 3 हेडलाइंस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. सबसे पहले, अगर तुम या तुम्हारे दोस्त H-1B वीजा पर हैं, तो ये खबर काफी इंटरेस्टिंग है. US में एक नया बिल प्रपोज हुआ है जो लॉन्ग टर्म इमिग्रेंट्स के लिए ग्रीन कार्ड का प्रोसेस आसान बना सकता है. प्रपोजल के मुताबिक जो लोग 7 साल से ज्यादा US में रह रहे हैं और जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उनके लिए परमानेंट रेजिडेंसी का एक नया पाथवे बन सकता है. बिल अभी प्रपोजल स्टेज में है, तो सबकी नजरें उसके नेक्स्ट स्टेप्स पर बनी हुई है. नंबर 2 पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह और अन्य लोगों के खिलाफ तालाबेरा 2 कोल ब्लॉक एलोकेशन मैटर में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्लोज कर दी हैं. कोर्ट ने सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट्स एक्सेप्ट करते हुए पहले के समन्स ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया है. एक लंबी लीगल प्रोसेस और ये चैप्टर अब ऑफिशियली क्लोज हो चुका है. एंड फाइनली नंबर थ्री पर मिडल ईस्ट से एक इम्पोर्टेंट डिवेलपमेंट. रिपोर्ट के हिसाब से ईरान ने US फोर्सेज को टारगेट करते हुए मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए हैं. US सेंट्रल कमांड ने कहा है कि इनकमिंग मिसाइल्स सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिए गए हैं और किसी भी तरह की कैजुअल्टी या डैमेज रिपोर्ट नहीं हुई है. सिचुएशन पर नजर बनी हुई है और दुनिया नेक्स्ट डेवलपमेंट्स को क्लोजली वॉच कर रही है. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 विद मी प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp ka number hai 9033 mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
4: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
5: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
4: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
6: Honey, it's 11 p.m., our bedtime. Where are you?
7: I am not going to bed with you ever again.
6: But why? What did I do?
7: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
6: Oh, honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
7: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
6: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
7: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
8: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
9: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
10: अब मिर्ची खा.
12: Radio Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हे, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। वेलकम टू राशि जोन। चलो देखते हैं कि आज हमारी किस्मत में क्या लिखा है।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी मेष राशि, आज किसी अपने की हेल्प जरूर करो, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को साइड पर मत रखो। तुम्हारे आइडियाज जो है ना, वो तुम्हारा सुपर पावर है। आज तुम्हारा लकी कलर इज कोरल, लकी नंबर इज 17। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, फन तो कंटिन्यू होता रहेगा बॉस, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सीन पर मत छोड़ दो। बैलेंस इज द रियल फ्लेक्स ऑफ लाइफ। आज तुम्हारा लकी कलर इज रस्ट कलर, लकी नंबर इज 24। जेमिनी यानी मिथुन राशि, जो सबसे लाउड बोलता है जरूरी नहीं कि वो सबसे स्मार्ट बोलता हो। ट्रस्ट योर ओन ब्रेन टुडे। लकी कलर फॉर यू इज ऑफ व्हाइट, लकी नंबर इज 9। कैंसर यानी कर्क राशि, फैक्ट्स पे फोकस करो बेबी, फीलिंग्स को स्टीयरिंग व्हील मत बना दो, स्पेशली मनी और वर्क के मैटर्स में। लकी कलर फॉर यू इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 31। लियो यानी कि सिंह राशि, हैप्पी लियो सीजन, स्पॉटलाइट ऑफिशियली तुम्हारे ऊपर आ चुकी है। कॉन्फिडेंस फुल चार्ज पर रखो, बस ओवर एक्टिंग सिर्फ बॉलीवुड के लिए छोड़ दो। लकी कलर फॉर यू इज टील, लकी नंबर इज 1। वर्गो यानी कन्या राशि, कंफ्यूजन टेम्पररी है, अगले कुछ दिन आंसर्स खुद ब खुद तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। रिलैक्स करो, गूगल मैप्स की तरह लाइफ भी रीराउट कर रही है। लकी कलर फॉर यू इज पर्पल, लकी नंबर इज 14। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। अगर आज के राशि जोन से तुमने रिलेट किया है तो मुझे डेफिनेटली बताना। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप करो मुझे 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। फिलहाल के लिए चिपक के बैठो यहीं पर, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: नो
5: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
6: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
7: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
6: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हेलो, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। चलो जल्दी से देखते हैं बाकी की बची 6 राशियों का आज रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लीब्रा यानी कि तुला राशि, ओवरथिंकिंग को आज अनपेड लीव पर भेज दो। पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। गुड वाइब्स आर कंटेजियस। लकी कलर फॉर यू इज रोज गोल्ड। लकी नंबर इज 22। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, करियर मोड ऑन करो। छोटी छोटी इरिटेशंस को म्यूट करो यार। फ्यूचर पर जूम इन बनाए रखो। लकी कलर फॉर यू इज कोरल। लकी नंबर इज 8। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, एडवेंचर का मूड है, अमेजिंग। बस टीम वर्क को मत भूलना। सोलो हीरो से ज्यादा मजा आता है एंसेंबल कास्ट में, समझे। लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज। लकी नंबर इज 35। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, मनी मैटर्स को आज थोड़ा सीरियसली देखो। स्मार्ट डिसीजन सिर्फ वॉलेट ही नहीं रिलेशनशिप्स भी प्रोटेक्ट करते हैं। लकी कलर फॉर यू इज चारकोल ग्रे। लकी नंबर इज 12। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आज दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनना, कभी कभी अच्छा वाला मोमेंट जो है ना लाइफ का बेस्ट अपडेट होता है। लकी कलर फॉर यू इज इलेक्ट्रिक ग्रीन। लकी नंबर इज

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: और इसी के साथ मेरा शो रैप करने का टाइम आ चुका है। मैं हूँ प्रिसिला, सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स, और आज का लास्ट मिर्ची तो तुम्हें खिलाकर जाऊंगी। चाइना का फास्ट टेलीस्कोप, जिसे प्यार से स्काई आई भी कहते हैं, इसने 1000 से ज्यादा पल्सर्स डिस्कवर करके ग्लोबल रिकॉर्ड बना दिया है। अब अगर सोच रहे हो पल्सर्स होते क्या है, तो सिंपल वर्जन ये है कि ये एक सुपर डेंस सुपर फास्ट स्पिनिंग स्टार होता है जो रेगुलर रेडियो सिग्नल भेजता रहता है, जैसे यूनिवर्स का अपना GPS बीकन हो। साइंटिस्ट का कहना है कि ये डिस्कवरीज जो है हमें स्टार्स कैसे इवॉल्व करते हैं मिल्की वे को और अच्छे से समझने में और फ्यूचर के डीप स्पेस नेविगेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। सो इसीलिए चाइना ने बहुत बड़ा वाला काम कर दिया है। और अब एक छोटू सा काम मैं करती हूँ, तुम्हें याद दिला देती हूँ कि तुम्हें मुझे फॉलो करना है। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। अभी मेरे जाने का टाइम है, टाटा बाय बाय, मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस पर। तब तक के लिए यू बी गुड, खाओ पियो ऐश करो, एंड ऑफ कोर्स मिर्ची सुनते रहो, इट्स हॉट।

0: सुबह सुबह का टाइम हुआ करता था और स्कूल बस में सब चुप होते थे। क्यों? क्योंकि स्कूल असेंबली के लिए न्यूज़ जो ढूंढनी होती थी।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. और हाँ, हमारी जिंदगी में ऐसा भी तो एक टाइम हुआ करता था यार। आज की मॉर्निंग्स हम कहते हैं कि वी मस्ट गो स्लो, आराम से कॉफी इंजॉय करो एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन बचपन की मॉर्निंग्स हमारी बहुत तूफानी हुआ करती थी यार। भागम भाग में तैयार होना, भागम भाग में नाश्ता करना, भागम भाग में बस पकड़ना, और फिर फाइनली जब बस में बैठ जाते थे तो सब शांत। क्यों? क्योंकि हम सब ना न्यूज लिख रहे होते थे। मुझे नहीं पता आपके स्कूल में ऐसा होता था कि नहीं होता था, लेकिन हमारे स्कूल में डेफिनेटली होता था कि यार हम सबको ना एक छोटी सी डायरी मेंटेन करनी पड़ती थी। वो डायरी हमेशा हमारी पॉकेट्स में रहा करती थी, एंड उस डायरी के अंदर रोज सुबह हमें न्यूज लिखकर ले जानी होती थी स्कूल, ताकि असेंबली में अगर अचानचूक किसी को बुला लिया जाए, जो कि होता भी था हमारे साथ, हमें न्यूज बोलनी आनी चाहिए ऑन द स्टेज। और इसीलिए सब अपने आप को बचाते हुए हर रोज सुबह बस के अंदर न्यूज ही लिख रहे होते थे, एक नेशनल, एक इंटरनेशनल और एक लोकल। तब ना ये सिस्टम बहुत बोर लगा करता था, बहुत चिड़ होती थी, और दिमाग यही कह रहा होता था कि यार ये रोज सुबह क्या क्या टंडे लगाने पड़ते हैं यार, न्यूज़पेपर घर से लेकर आओ और फिर बस में बैठ के न्यूज टीपो। हमारे घर में ना दो न्यूज़पेपर आते थे इसी चक्कर में, एक जो मैं स्कूल लेकर जा पाऊं जब मुझे न्यूज लिखनी होती थी बस के अंदर, और दूसरा जो घर पे रह जाए ताकि बड़े पढ़ पाए। लेकिन ये जो चिड़न कुड़न बलन थी ना, और जो बोरियत होती थी इन सारे कामों को करते हुए, आज समझ आ रहा है कि ये अच्छी चीज थी यार। कसी जो न्यूज अपडेट रखने की आदत मुझे आज है ना, वो यहीं से तो आई है। वैसे ना लाइफ में और भी ऐसी कई सारी आदतें हैं जो हमें तब तो बहुत ही इरिटेटिंग लगा करती थी, क्योंकि तब करना पड़ता था क्योंकि हम छोटे हैं, लेकिन आज जब वो हमारी लाइफ में एक अच्छे तरीके से इन्वॉल्व है और डिसिप्लिन लेकर आ रही है ना, तो लगता है कि हाँ यार कुछ आदतें अच्छी होती हैं। बताऊंगी आपको थोड़ी देर में उन आदतों के बारे में, लेकिन अभी के लिए मिड मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालने की बारी आ चुकी है। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
4: सिर्फ हैप्पी फ्रेंडशिप डे कहके काम मत चलाओ. गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन. ज्योत सिन्हा एंड तरुण शर्मा ऑफ कल्टीवेट टैलेंट्स अनलिमिटेड प्रेजेंट दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0. लाइव बैंड एंड बॉलीवुड सिंगर्स, शायरी और नॉनस्टॉप ओपन डांस फ्लोर.
5: एंड द बेस्ट पार्ट, सिर्फ $65 में 3-course डिनर और ढेर सारी मस्ती. फ्राइडे ऑगस्ट 7th 7 PM एट रॉयल अल्बर्ट्स पैलेस, न्यू जर्सी. टिकट्स अवेलेबल ऑन sulekha.com और कॉल 732-997-2409.
4: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: रात में कपड़े प्रेस करके बैग जमा के सारी तैयारी करके सोना, ये हमारी बचपन की आदत थी। और जब रात में ये सारे काम करने पड़ते थे ना, आधी नींदों में थके हुए होते थे फिर भी, क्योंकि अगले दिन स्कूल है, तो बहुत आलस आता था यार। मम्मा इतना बोल बोल के पुश कर करके हमसे काम करवाती थी ताकि अगली सुबह हम स्कूल जाने के लिए लेट ना हो जाए। लेकिन ये आदत ना आज बड़ी अच्छी लगती है।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और बचपन की कुछ आदतें जो तब तो हमें लगता था कि बड़ी फोर्स्ड है, हम बड़े बेमन से किया करते थे, लेकिन आज लगता है कि यार अच्छा हुआ जो ये सब सीख गए, काम में आ रही है। उनमें से एक यही है, रात में सुबह की तैयारी करके रख लेना सारे कामों की। और उसमें से स्पेशली कपड़े प्रेस करने वाली जो आदत थी हमारी, ये बड़ी सही काम आ रही है यार आज के टाइम पर। मतलब मैं तो अब उन लोगों को भी बड़ा प्रेस करती हूँ जो मैं तो कर ही रही हूँ लेकिन खुद भी इस आदत को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोग इस आदत को भूल भी जाते हैं। लेकिन आज भी जो लोग इस आदत पर अपना पूरा ध्यान फरमाते हैं वो मेरा ध्यान भी ले जाते हैं। और ऐसे लोगों को देखकर समझ में आता है, हाँ ये इंसान जो है ना ये बड़ा डिसिप्लिन्ड है। So, जो कहां की चीज कहां जोड़ के हम इंसान की पर्सनालिटी ट्रेट निकाल लेते हैं कि ये इंसान डिसिप्लिन है क्योंकि ये रात में अपने कपड़े प्रेस करके सोता है। और हाँ, ये बात सच्ची है कि मुझे वो लड़की पसंद है जो रात में अपने सुबह की तैयारी कर लेते हैं। इनफैक्ट पता है आज भी मेरे साथ ऐसा होता है कि अगली सुबह की जब तैयारी कर रही होती हूँ ना, रात में अपने कपड़े वपड़े प्रेस करके रख रही होती हूँ, तो ऐसा फील आ रहा होता है जैसे कि स्कूल की तैयारी कर रही हूँ। आज तक ये फील कभी नहीं आया है कि मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे ऑफिस जाने की या कहीं बाहर जाने की तैयारी करनी पड़ रही है। आज भी स्कूल वाला ही फील आ रहा होता है, जो फील शायद आपको भी समझ आए, जो सुबह भी आता है। अगर कभी ऐसा होता है कि हम अपनी रूटीन से पहले सुबह सुबह उठ जाते हैं किसी काम के चलते, तो ऐसा लगता है जैसे स्कूल जाने के लिए उठे। यू कैन टेक द किड आउट ऑफ द स्कूल, लेकिन यू कैन नॉट टेक द स्कूल आउट ऑफ दैट किड जो आज भी हमारे अंदर कहीं बसा हुआ है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
3: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
4: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
5: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
7: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
10: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
11: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
10: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
12: अब मिर्ची खा।
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
15: It's 11:30 a.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

0: न चुस्कियों में न सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आजकल जो हम हमेशा अपने साथ एक बॉटल रखते हैं कैरी करते हुए, हमें लगता है कि हम बॉलीवुड को कॉपी कर रहे हैं. नो वेज, ये आदत हमारे बचपन की है.
2: आज की बार 90s के साथ.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और ये आदत हमने स्कूल से सीखी है यार, जब रोज बॉटल भरकर ले जाना हमारे लिए लाजमी हुआ करता था. इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा लगता था कि यार ये बॉटल और कैरी करनी पड़ती है, क्योंकि वो लटकाने वाली बॉटल होती थी, कैरी करने वाली बॉटल नहीं हुआ करती थी. हमेशा एक बॉटल हमारे गले में लटकी रहती थी, कंधे पे लटकी रहती थी, या कैसे भी करके उसे हमें कैरी तो करना ही होता था. तब बड़ा जोर आता था. लेकिन अब लगता है कि यार ये जो स्किन के हाइड्रेशन के लिए आदत पड़ी है ना, ये बड़ी सही पड़ी है यार. हमें लग रहा होता है कि हमने बॉलीवुड से ये सारी चीजें सीखी हैं, लेकिन नहीं बाबा, हमने ये आदत जो है ये बचपन में ही सीख ली थी. टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड स्कूल में टीचर्स कब से कहा करती थी यार. और अब जो हमें ये बोझ नहीं लगता है ना कि हमें बॉटल भी कैरी करनी है, वो इसी वजह से, क्योंकि बचपन में हम इसके ऑलरेडी आदि और इत्यादि हो गए थे. बॉलीवुड ने सिर्फ और सिर्फ इन बॉटल्स को थोड़ा फैंसी कर दिया है, लेकिन ये जो आदत है ना, इसका क्रेडिट बॉलीवुड को नहीं दे सकते बॉस, बचपन को देना जरूरी है. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. On Mirchi, it's hot.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बिपाशा बसु जो नो एंट्री में इतना छा गई थी, क्या आपको पता है वो नो एंट्री में होने ही नहीं वाली थी।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, बिपाशा बसु का जो कैरेक्टर था, that was supposed to be played by प्रियंका चोपड़ा। लेकिन फिर हुआ ये कि प्रियंका चोपड़ा को बैकआउट करना पड़ गया, क्योंकि वो मुझसे शादी करोगी की शूट में बिजी थी और नो एंट्री की शूट पे नहीं आ पा रही थी। तो उन्होंने जो एडवांस भी लिया था वो भी उनको वापस करना पड़ गया था। लेकिन बिपाशा बसु की जैसे ही एंट्री हुई, एक्चुअली हुआ ये कि इतनी लास्ट मिनट एंट्री हुई ना कि वो एक वेकेशन से लौटी थी और उन्होंने वजन बढ़ा लिया था। अब ये जो कैरेक्टर उनको प्ले करना था वो तो हम सबको ही पता है कि बड़ा हॉट एंड सेक्सी कैरेक्टर था। इनफैक्ट इन एन इंटरव्यू कहीं जॉन अब्राहम को मैंने ये भी बोलते सुना था कि बिपाशा जो थी वो बीमार भी पड़ गई थी, जिसकी वजह से उनके वर्कआउट्स और डाइट्स जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे थे। यानी कि हुआ था सोने पे अभागा। लेकिन फिर भी इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए बिपाशा बसु ने पूरी मेहनत करी और पूरी कोशिश करी कि वो कामयाब हो पाए। एंड इन फैक्ट वो कामयाब हुई भी। आज भी हमें बिपाशा बसु का वो कैरेक्टर इन नो एंट्री स्टिल याद है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
3: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
2: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन.
6: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
6: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
8: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
9: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
8: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है.
8: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बचपन से हम इस गाने को गुनगुनाते आए हैं और आज इसकी धुन की सच्चाई सामने आ गई है।
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: वेल, त्रिदेव का ये गाना

0: अब आप भी सोच रहे होगे कि क्या यार सारा दोनों धुने एक के बाद एक बजा दी, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली दो अलग अलग जगहों से उठाई हुई धुने हैं। एक तो जो मैंने आपको सुनाई वो त्रिदेव की थी, एंड ये जो म्यूजिक जहां से इंस्पायर्ड है, रादर कॉपीड है, इज मायमी साउंड मशीन का द रिदम इज गोना गेट यू। यार वैसे तिरछी टोपी वाले ने तो शौक से एज अ फैशन स्टेटमेंट ये टोपी पहनी थी, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर विजू शाह ने तो पूरी ऑडियंस को ही टोपी पहना दी। वाह, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: या वांट टू फील दैट, कम ऑन गर्ल, बी द बीट।

0: हुए।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: लकी अली एंड सुनिधि चौहान की आवाज में दिस गाना इज फ्रॉम द फिल्म सुर, जो कि कैसेट के साइड बी का चौथा गाना है।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: आ भी जा, ये गाना मुझे बहुत खूबसूरत लगता है यार। हालांकि गाना थोड़ा सैड है, मिलैंकली है इस गाने के अंदर, लेकिन ये गाना जो है ये पॉजिटिविटी की बात कर रहा होता है, क्योंकि इस गाने में यही गाया गया है कि आ भी जा ए सुबह आ भी जा, और रात को कर विदा दिल रुबा आ भी जा। यानी कि हम जो वो टनल के एंड में एक लाइट ढूंढ रहे होते हैं ना, दिस गाना इज समवेयर अराउंड दैट फैक्ट ओनली। अब ये सुबह ना किसी के लिए मोहब्बत हो सकती है, ये सुबह किसी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये सुबह किसी के लिए सिर्फ और सिर्फ जीने की एक वजह हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि इंसान कौन सी सिचुएशन में है, और उस सिचुएशन के हिसाब से उस इंसान के लिए ये सुबह क्या मायने रखती है। इस गाने में हालांकि मोहब्बत के बारे में बात की गई है, और तभी ये कहा गया है कि मैं हूँ गगन तू है जमीन, अधूरी सी मेरे बिना, रात को कर विदा दिल रुबा भी जा। लेकिन वही वाली बात है कि हम लाइफ में अभी फिलहाल किस चीज को रोमांटिसाइज कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज है जो हमें चाहिए और तहे दिल से हम उस चीज के लिए दुआएं कर रहे हैं। मेरी दुआ भी आपके लिए है कि आपकी वो दुआ कबूल हो जाए और जाते जाते यही गाना हो जाए। क्या बोलते हो, ये गाना आपके लिए लगाती भी जा रही हूँ। एंजॉय द ट्रैक, एंड मैं अब कह देती हूँ कि हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, और यहाँ के अलावा मिल जाइएगा मुझे ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। Stay tuned to Mirchi, 'cause it's hot.

ऐसे ढूंढ के चुन के मैं दो लोग लाई हूँ आज बात करने के लिए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। यस, पुरानी जीन्स पर आज हम ऐसे दो लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो पोल्स अपार्ट हैं, एकदम अलग अलग दुनिया, मतलब दुनिया एक ही है, फिल्मी दुनिया लेकिन अगर उनकी पर्सनालिटीज के बारे में आप सोचें तो वो बिल्कुल ही नॉर्थ एंड साउथ हैं। देखिए, एक तो अपने संजू बाबा संजय दत्त, 80s वाले संजय दत्त या बचपन वाले संजय दत्त, और दूसरे हैं द लेजेंडरी द वेटरन कॉमेडियन जॉनी वॉकर साहब। है कोई तालमेल, कोई कॉमन पॉइंट? वैसे मैं सोच रही थी बाय चांस इन्होंने किसी फिल्म में साथ में काम किया है, मुझे तो ध्यान में नहीं आ रहा है। इफ यू कैन थिंक ऑफ इट यू कैन टेल मी इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स करके, डीएम करके @rj.charu rj.charu ये मेरा आईडी है। तो इन दोनों लोगों के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल बातों पे ब्रेक, इट इज अ म्यूजिकल ब्रेक। ये गाना सुनेंगे पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।
1: फिल्मों से भी ज्यादा फिल्मी लाइफ वाले संजू बाबा, ऐसा सुनने में आता है कि जब ये 3-4 साल के थे और नरगिस जी के साथ अपनी मम्मा के साथ अपने फादर सुनील दत्त को विजिट करने उनकी एक फिल्म के सेट पर गए थे। ये फिल्म थी 1963 की मुझे जीने दो, जो डाकुओं के ऊपर थी। सुनील दत्त साहब इसमें एक्ट भी कर रहे थे, इसके प्रोड्यूसर भी थे। इस फिल्म की शूटिंग हुई थी मध्य प्रदेश की चंबल घाटी में और एक बार तब के एक फेमस डाकू इस फिल्म के सेट पर पहुँच गए थे और छोटे से संजू बाबा किडनैप होते होते बचे थे।
2: कोशिश की थी, रूपा डाकू उस टाइम पे ऑपरेट करते थे, वो दत्त साहब को मिले, मैं छोटा था, मेरे को गोद में बिठा लिया और दत्त साहब को पूछे कि आपने पिक्चर में खर्च कितना किया अभी तक। उन्होंने बोला 10-15 लाख रुपए। बोले अगर इसको उठा के ले जाएं कितना देंगे, तो हंसी मजाक से मुझे उठा लिया उस दिन, पैकअप मम्मी और मेरा बॉम्बे। तो ये सही था, किडनैप नहीं हुआ, लेकिन
1: डाकुओं को आइडिया तो आ ही गया था। और मैं यानी कि चारू वापस आती हूँ थोड़ी देर के बाद यही
0: पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा।
4: चढ़दे पंजाब बॉर्डर कबूतर नहीं टप सकदा। ते तू किस तरह टप आ?
3: अते एक बार इश्क हो जावे ता आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
5: बागी ते आशिक हद्दां सरहदां टप ही आउंदे ने।
3: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा।
6: रांझे दित्ते 12 साल ते मैं दित्ती आ जिंदगी।
3: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नू फिल्म इश्कनामा।
7: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
8: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
7: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स लेडीज फर्स्ट चॉइस।
9: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
10: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
9: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
11: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
9: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
12: एक ही होता है।
9: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: सागर में आज यार का जलवा दिखा दिया, जालिम मेरी शराब में ये क्या मिला दिया।
1: ये गाने के लिरिक्स हैं भाई।
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।
1: 1971 की फिल्म रेशमा और शेरा, जिसमें सुनील दत्त, वहीदा रहमान, अमिताभ बच्चन थे, और इसी फिल्म का ये गाना मतलब कव्वाली, जिसमें पहली स्क्रीन अपेयरेंस हुई थी संजू बाबा की। जी 1981 की रॉकी नहीं, ये वो फिल्म थी जिसमें 10-11 साल के संजू बाबा पहली बार दिखाई दिए थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था,
3: रेशमा और शेरा में एक गाना था उसमें मैंने वो काम किया था, छोटा सा था। ये महबूब स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी और डैडी को एक लड़का मिला था, दूसरा नहीं मिला था, तो मैं मिलने आया हूँ उनको, तो मम्मी के साथ, तो उन्होंने बोला यार इसको कपड़े पहनाओ, इसको यहाँ बैठाओ यार जल्दी से। अरे बाप रे ये क्या हुआ, उन्हें सिर्फ हाथ ऐसे करना है और पापा को देखना है, और जब मैं ये बोलूंगा ना ये जो गाने में आ रहा है शेर, तो ऐसे करना है, वाह वाह वाह वाह। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि मुझे उस वक्त समझ नहीं आया था, लेकिन कैसे भी करके हो गया।
0: जालिम मेरी शराब में ये क्या मिला दिया, रेशमा और शेरा से। YouTube पे जाके देखो छोटे से संजू बाबा। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
6: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
7: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only on.

0: बाबा में बाबा संजू बाबा
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और बचपन से ही बैड बॉय हैं। एक बार एक इंटरव्यू में इन्होंने किस्सा शेयर किया था कि क्या होता था जब इनके फादर सुनील दत्त से प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स इनके घर मिलने आते थे।
2: एक वेरांडा हुआ करता था, वो सब प्रोड्यूसर्स बैठ के सिगरेट पी के बाहर फेंकते थे और मैं लेट के नीचे वो सिगरेट उठा के पीता था। तो एक दिन दत्त साहब ने बोला कि वहाँ से धुआं कैसे निकल रहा है यार। तो उन्होंने झाग के देखा तो मैं लेटा हुआ सिगरेट पी रहा था। तो उस दिन के बाद मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। मैं बोर्डिंग स्कूल लॉरेंस स्कूल सनार में था 11 साल।
1: वहाँ भी इनकी शरारतें कम नहीं हुई, लड़कियों को लव लेटर्स लिखते थे ये।
2: लेटर्स तो मतलब मैं 15 को लिखता था, मैं बोलता था एक तो फंसेगी।
1: वैसे अपनी शरारतों के लिए इन्हें अपने मम्मी पापा से खूब डांट मार पड़ी है, खास करके मम्मा से किस तरह की मार पड़ती थी एक बार इन्होंने बताया था।
2: और माँ वो मतलब क्या वेस्टर्न पिक्चर देखी क्या कभी, गुड बैड एंड अगली, और हाँ तो वैसी थी वो चप्पल फेंकने में। वो लोग यहाँ से गन उतारते तो वो यहाँ से चप्पल।
1: लो बताओ, मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

0: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।
1: और संजू बाबा बचपन से बिगड़े दिल शहजादे ऐसे कैसे बन गए, एक बार एक इंटरव्यू में इनके फादर लेट सुनील दत्त साहब ने शेयर किया था।
2: हमारी तरफ से भी और इनके मामू जान की तरफ से भी, दोनों तरफ से एक प्यार मोहब्बत इतना ज्यादा था कि जो ये चाहते थे मिलता था इनको। और ये मेरा ख्याल है कि जिंदगी में मैंने इतनी नाज बर्दारी किसी की नहीं की होगी जो मैंने संजय दत्त साहब की। इसके अंदाज जो थे बिगड़ने के, कि एक बार इसके मन में कुछ चीज आ जाए कि ये मुझे करना है तो फिर तो इसको कोई रोक नहीं सकता। एक बार हम इटली में थे तो ये साहब कोई 3.5 साल के होंगे, वहाँ पे बाजार है बिया बेनीतो, तो वहाँ भारी रेस्टोरेंट होती है जहाँ कॉफी वॉफी पी जाती है। इसने कहीं देख ली घोड़ा गाड़ी तो इसने शोर में जाना शुरू कर दिया, मुझे तो घोड़ा गाड़ी पे जाना। तो हम किसी का इंतजार कर रहे थे, मीटिंग थी किसी के साथ, तो हमने कहा आप घोड़ा गाड़ी पे नहीं जा सकते, अब किसी को मिलना है। तो इसने सड़क के ऊपर लौटना शुरू कर दिया, वो औरतें देख रही हैं, इटालियन औरतें देख रही हैं, वो माय गॉड व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रूअल पेरेंट्स दिस पीपल आर, एक बच्चे को रुला रहे हैं, वो लौट रहा है तब भी उसकी परवाह नहीं कर रहे। तो मेरी बीवी को बड़ी शर्मिंदगी हुई इस बात में। इतने में बाई चांस वो आदमी आ गया, इटालियन था जिसके साथ हमारी मीटिंग थी। कहता क्या हो रहा है? मैंने कहा कि भाई मेरा बच्चा जो है घोड़ा गाड़ी पे जाना चाहता। तो कहता देन वी विल हैव अ मीटिंग इन द घोड़ा गाड़ी इटसेल्फ, सो ही वाज सिटिंग विद द कोचवान एंड वी वर हैविंग अ मीटिंग इन द घोड़ा गाड़ी।
0: समझ में आ रहा है कि हमारे बाबा बचपन से बाबा ही क्यों रह गए। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
5: Inefficient,
6: very complex,
7: clumsy, or
8: confusion ही confusion.
4: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Tera kya hoga, Kalia?
12: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
11: Ab, mirchi kha.
13: Radio Mirchi, it's hot.
0: Purani Jeans with Charu, only on

0: संजू बाबा ने भाई बन के फिल्मों में विलन्स का बैंड तो बहुत बजाया है ना।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।
0: लेकिन बचपन में उन्हें ड्रम्स, बोंगो ये सब बजाने का भी बहुत शौक था। एक बार एक टीवी शो में उनके फादर लेट सुनील दत्त, सिस्टर्स नम्रता और प्रिया दत्त ने उनके इस म्यूजिक के शौक के बारे में कुछ शेयर किया था।
2: बट ड्रम सेट,
3: हाँ ड्रम सेट था, कुछ
2: गिटार भी था। यूज्ड टू बी इट वाज लाइक अ अलार्म, बिकॉज भैया एक ही ट्यून बजाते थे, दैट वाज द स्कूल बैंड।
4: 71 में जब बांग्लादेश हम गए तो हमारे साथ लता जी, इतनी बड़ी सिंगर, तो इसने बड़ा इंसिस्ट किया, इसने कहा कि मुझे भी जाना है। तो मैंने कहा तुम जा नहीं सकते हो क्योंकि उसमें सब कलाकार जा रहे हैं, ये स्कूल से आया था छुट्टियों में, तो तुम्हें कुछ ना कुछ प्ले करना पड़ेगा। तो इसने कहा जी मैं बांगो हो जाऊंगा। हम इसको ले गए, तो अब लता जी जब आई स्टेज के ऊपर गाने के लिए तो सारे म्यूजिशियंस थे, तो इससे ये गाते गाते रुक गई क्योंकि बांगो जो गलत बज रहा था।
0: तभी से लाइफ का उल्टा पुल्टा बैंड बजा रहे हैं ये। मैं हूँ चारू आपके साथ, पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
6: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
6: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
11: It's 2:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
0: Purani jeans. With Charu, only on

0: प्यार लव इश्क मोहब्बत के साथ वेलकम वंस अगेन। आप सुन रहे हैं मिर्ची पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।
1: और आज हम ऐसे दो पोल्स अपार्ट लोगों की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने संजू बाबा संजय दत्त की बात की, बचपन में वो कैसे थे, ऑफ कोर्स बहुत शरारती थे, आउट ऑफ कंट्रोल थे, और कैसे उनकी पहली फिल्म एक्चुअली रॉकी नहीं रेशमा और शेरा थी जिसमें उन्होंने सा छोटा सा रोल किया था एज अ चाइल्ड एक्टर। नाउ द अदर आइकॉनिक एक्टर जिनके बारे में हम अब थोड़ी देर के बाद बात करने वाले हैं, वो थे जो पहले बॉम्बे में एक बस कंडक्टर थे और वो अपनी बस की सवारियों को बहुत एंटरटेन करते थे। उनकी ऐसी कुछ हरकतें एक फिल्मी हस्ती ने नोटिस कर ली और उनकी एंट्री हो गई फिल्मी दुनिया में। आई एम टॉकिंग अबाउट जॉनी वॉकर साहब। करते हैं बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Pyari brides, kya dhoond rahi ho apna dream wedding lehenga? To aa jaiye Miss India Bridal Store.
5: Miss India laaye hai latest bridal lehengas, exclusive reception aur party wear dresses and grooms ki sherwanis.
4: Visit us at 79 Middlesex Avenue, Islip.
6: Batting to kaafi saare karte hain. Virat ek hi hota hai.
7: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
6: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
8: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
1: एक ही होता है।
6: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू।

0: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। फिल्मों में एक शराबी इंसान का रोल निभाने की महारत जिनको हासिल थी वो थे एक महारथी कॉमेडियन बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी साहब, यानी कि जॉनी वॉकर साहब। और एक बहुत पुराने इंटरव्यू में सुनिए, जब उनसे पूछा गया था कि भाई क्या उनका कोई ऐसा थिएटर का बैकग्राउंड था जो वो फिल्मों में आए थे।
1: नहीं नहीं, कुछ नहीं, कभी काम नहीं किया, सवाल ही पैदा नहीं होता। इंदौर से थे हम लोग और खाली सिनेमा देख देख के मुझे शौक हो गया था, तो चाहता था शुरू से कॉमेडियन बनना ही। और हम लोग रहते थे इंदौर में, लेकिन वहाँ तो कोई फिल्म का कोई सिलसिला था ही नहीं। कोई इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुंबई आना हो गया फैमिली के साथ। ये 1942 में फैमिली के साथ फादर यहाँ आ गए थे, तो यहाँ आने की वजह से यहाँ मुझे कोई रास्ता मिल गया और काम भी मिलना शुरू हो गया। उसमें कामयाबी भी अल्लाह ने दे दी, सिलसिला चलता रहा बस।
0: और कौन से ऐसे कॉमेडियन थे जिनको देख कर ये इंस्पायर हुए?
1: कि उस जमाने में नूर मोहम्मद चार्ली करके हुआ करते थे, उनको मैं देखता था और उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर था मैं, इसलिए मैंने ये उनको पकड़ के और कॉमेडी की तरफ रागिब हुआ और कॉमेडी करना चाहे।
0: और एक्चुअली क्या ही कॉमेडी करते थे भाई, जैसे ही स्क्रीन पे आते थे मजा आ जाता था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 3 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
2: इंडी टॉप 10
3: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
4: तारीखें भूल जाती हैं, नाम भूल जाते हैं, पर कुछ गाने हमें एक पूरा जमाना याद दिला देते हैं। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। ये वो शो है जहां हफ्ते के हॉटेस्ट टॉप 10 इंडिपेंडेंट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है। सम स्पेशल शाउट आउट्स, ऑल दैट एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10, जसलीन रॉयल बादशाह का गाना इनाम। पिछले हफ्ते से दो पोजिशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक और नंबर 10। उसके बाद नई नवेली एंट्री, ज़ारा खान स्केल्स का गाना, गाने का नाम है मूव बॉडी। इस गाने ने डेब्यू किया है ऑन गाना नंबर 9 एंड इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
5: नंबर 9।

0: ज़ारा खान स्केल्स का गाना, गाने का नाम है मूव बॉडी, और नई नवेली एंट्री डेब्यू किया है सीधा ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। गाने आर्ट एक तरह से एक टिकट होते हैं टू अ मेमोरी, एंड सम ऑफ द बेस्ट मेमोरीज ऑफ माय लाइफ आर ऑफ दोस कॉलेज डेज। ये बात कभी सोची है कि जब हम उस उम्र में थे जब कुछ ज्यादा पता नहीं था तो हम सबसे बहादुर थे। उस उम्र में जो भी बनाया, जो भी सपने देखे, जो भी लिखा, आधा अधूरा या पूरा, उसमें एक चीज थी जो अब बाद में हम कहीं खो देते हैं, एंड दैट इज होप। वो हमारी जिंदगी का सबसे रॉ फेज होता है, जब हम ओवर कैलकुलेटिव नहीं होते कि इससे क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, करियर बनेगा या नहीं, बस दिल में कुछ था और लिख दिया। एंड दैट्स व्हाई इन द म्यूजिक स्पेस एज वेल, अगर आप देखेंगे सम ऑफ द बिगेस्ट पॉप स्टार्स जो हमने देखे हैं इन द लास्ट 4-5 इयर्स हैव बीन दीज यंग गन्स। बिली आइलिश द ग्लोबल आइकॉन का एग्जाम्पल ले लो, उनका गाना ओशन आइज तब फटा जब वो सिर्फ 18 साल की थी। हमारी अपनी जीनी जो देहरादून से है अब मुंबई में गाने बनाती है, उनके गाने लाइक सुकून, आशियाना, वो जनता के साथ कनेक्ट इसलिए ज्यादा करे बिकॉज उसकी राइटिंग बहुत ऑनेस्ट थी। तो ये ऑनेस्टी और ये रॉनेस कोई टेक्निक नहीं है या कोई हिम्मत नहीं है, या आई थिंक सोचने की हिम्मत है जो कहीं ना कहीं आई रियली फील वो उम्र अलाउ करती है। पर असली सवाल तो ये है कि जब हम कभी ये हिम्मत खो देते हैं तो क्या वो वापस मिल सकती है, क्या हम जीरो पे आके वापस शुरू कर सकते हैं। एक आर्टिस्ट है लखनऊ से जिनका एक गाना बहुत पॉपुलर हो रहा है, गाने का नाम है तारे, आर्टिस्ट का नाम है फरक, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट सॉन्ग्स जो जनता के दिल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें एक लाइन है जो आपको रोक देगी, वो कहता है परिंदा पिंजरे में इतने दिन रहा कि अब आसमान से ही डर लगता है। देयर सो मच टू टॉक अबाउट दिस सॉन्ग बट आई विल लेट यू सिट विद इट। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। आर्टिस्ट का नाम है फरक, गाने का नाम है तारे। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10 एज आवर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट ऑफ द वीक। एंजॉय।

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: Kasat Indie Top 10 Kanika Kasat on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana.
3: Ya bana.
2: Murga, murga. Nabiyat wala murga.
3: Mirchi, murga.
4: Hello.
5: Hello.
4: Hello.
5: हाँ जी कौन?
4: हेलो, किससे बात करनी है?
5: किससे बात करनी है?
4: भैया किससे बात करनी है?
5: भैया नंबर चेक करके दोबारा मिला?
4: पागल
5: पागल
4: कौन बोल रहा
5: है? पता नहीं कौन बोल रहा है।
6: इको आ रहा है। इको।
4: हेलो
5: हेलो
4: हेलो
5: हेलो जेंट्स आने भैया को मारूंगा तुझे, मैं बता रहा हूँ।
4: भैया नंबर चेक
5: मिला।
4: हेलो
5: हेलो
4: भैया क्यों परेशान कर रहा?
5: क्यों परेशान कर रहा है किसी को? पागल हो गया क्या यार?
4: अबे
5: पागल हो गया क्या यार? महंगा पड़ जाएगा, नंबर आ गया मेरे पास।
4: पागल
5: कहीं का?
6: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका? आप बुरा मत मानिएगा प्लीज।
4: रवि है।
6: रवि, रवि मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे, उसमें इको नहीं आएगी। बहुत परेशान कर दिया आपने
4: भाई।
6: आप खत्म कर दो यार।
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
11: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
12: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
13: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
12: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: Listener mein back to back gana sunega.
17: Back to back gana sunega.
0: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
18: Ghana Indie Top 10.
0: Kanika ke saath on Mirchi.
19: Number 7.
20: How chup

0: ऐश किंग की आवाज में गाने का नाम है किनिया सोनी, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने हर्ष नुसी की आवाज में उन्हीं की लिरिक्स सुनी की कॉम्पोजिशन वाला गाना सुना, गाने का नाम साडी सुन ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, hello, स्वागत है आपका। शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। म्यूजिक आर्ट है, आर्ट इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, एंड एक म्यूजिक का फॉर्म जो सबसे ट्रू है इन द वे इट एक्सप्रेसेस इज हिप हॉप। ये जॉनरा ना किसी स्टूडियो में पैदा नहीं हुआ था, ये वहां से आया है जहां लोगों को माइक नहीं दिया जाता था लेकिन दिल में कहानियां बहुत हैं। जहां तकलीफ कोई सुन नहीं रहा है तो एक्सप्रेशन म्यूजिक बन गया। हर कंट्री का, सिटी का, एरिया का रैप का फॉर्म अलग होता है, कॉज वहां से जुड़ी कहानियां अलग होती है। दिल्ली हिप हॉप अलग है, मुंबई हिप हॉप अलग है, केरला का हिप हॉप बहुत अलग है, पर व्हाट्स कॉमन अमंगस्ट ऑल दीज फॉर्म्स इज द रियलिटी एंड एक्सप्रेशन ऑफ द आर्टिस्ट। पर कहीं ना कहीं इस पूरे मूवमेंट के पोस्टर बॉय रहे हैं डिवाइन, जिनका असली नाम विवियन फर्नांडिस है। बहुत सारे लोगों को लगता है दैट गली बॉय जो मूवी बनी थी वो उनकी लाइफ पे बेस्ड थी। दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। उन्होंने उस मूवी में कंसल्ट किया था, बहुत हेल्प करी थी, उनका म्यूजिक है बट वो उनके बारे में नहीं है। बट देयर आर सॉन्ग्स लाइक मेरी गली में जो पूरे देश ने पहली बार सुना ऑन अ बिगर लेवल, कॉज वो गली बॉय जैसी मूवी में आया। पर उसी साउंड ट्रैक में एक गाना था कॉल्ड आजादी। इस गाने के प्रोड्यूसर है डब शर्मा, जो चंडीगढ़ का एक लड़का है जिन्होंने अपने कमरे में बैठकर ये कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, किसी फिल्म के लिए नहीं, किसी ऑडियंस के लिए नहीं, बस अपने लिए। एंड द सॉन्ग समहाउ मेड इट टू अंकुर तिवारी, जो उस वक्त गली बॉय की म्यूजिक को सुपरवाइज कर रहे थे। एक मेल गया, एक मीटिंग हुई, एंड दैट सॉन्ग मेड इट टू द बिगेस्ट मूवी अबाउट एक्चुअल हिप हॉप। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज हैज कम आउट ऑफ द कल्चर। डब शर्मा डिवाइन का गाना, गाने का नाम है आजादी। हर बार सुन के गूज़बम्स आ जाते हैं। गाना इंडी टॉप 10 पर, बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

ये गाना सुनने के बाद हाथ अपने आप सर पे चला जाता है. मैड रिस्पेक्ट टू डिवाइन फॉर दिस सॉन्ग, वन ऑफ द टॉप 5 सॉन्ग्स इन देसी हिप हॉप. एट आरजे करेगा ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड क्विकली इस इंडी पॉप क्विज का आंसर करो. डिवाइन एंड करण औजला ने एक कोलैब करके एक एल्बम रिलीज करी थी आज से 2 साल पहले. जल्दी बताओ उस एल्बम का नाम क्या है. काउंटडाउन का अगले वाला गाना अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी. 7 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. उड़ी उड़ी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 5.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर इस कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: Tera kya hoga, Kalia?
7: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
6: Ab mirchi kha.
8: Radio Mirchi. It's hot.

0: आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां की आवाज में गाने का नाम है ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, इस हफ्ते भी दो पोजीशन ऊपर जम करके ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। कुछ गाने इस हफ्ते हॉट होते हैं, अगले हफ्ते नहीं, बट कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं एक एड्रेस बन जाते हैं हमारे लिए, एड्रेस टू अ मेमोरी, अ ट्रिप टू नॉस्टैल्जिया। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। द सॉन्ग फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती है दीवाना।
0: एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज

गाने का नाम है मायरी, साल 2000, एल्बम फिर धूम पलाश थे इनकी आवाज में। जरा याद कीजिए यार वो जमाना, कैसेट की रील पेंसिल से घुमाना, इंतजार करते रहना कि मेरे वाला गाना आएगा। आई रिमेम्बर आई वॉज ऑब्वियसली इन स्कूल जब मैंने गाना सुनना शुरू किया था, बहुत अच्छी धुन लगती थी। एंड दैट लाइन, दैट बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलके मायरी, शायद मैं इतनी छोटी थी दैट मैंने उसका मतलब ही नहीं समझा, एंड मैं बस बहुत इतराती थी ये गाना सुन के, सजती थी सवरती थी। एंड एज वी कीप ग्रोइंग अप वो गाने समझ में आने लगते हैं, उनके पीछे के मतलब बदलते जाते हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे मायरी में वो अपनी माँ से ये कहानी बता रहे हैं ये भी नहीं समझ में आया था, लेकिन नाउ इट ऑल साउंड सो ब्यूटिफुल दैट वो जिस लड़की की तारीफें कर रहे हैं, जिस लड़की के बारे में बता रहे हैं, जिसकी याद उन्हें आ रही है, वो अपनी माँ को बता रहे हैं। पर यही तो बात है, गाना नहीं बदला यार, हम बदल गए। गाना 1998 में बना था, फ्रंट मैन पलाश सेन की आवाज, यूफोरिया द बैंड, जिसने आज भी ऑलमोस्ट आफ्टर 45 इयर्स ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कभी कोई फिल्म का गाना नहीं किया। द रियल ओजी पोस्टर बॉयज ऑफ पॉप म्यूजिक, अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, यूफोरिया द बैंड का गाना, गाने का नाम है मायरी, इज योर टिकट टू नॉस्टैल्जिया टुडे ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

आई स्वेयर गाने आर लाइक मेमोरीज जो हमें ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. आई वॉज टेकन बैक टू माई चाइल्डहुड. I swear, gaane are like memories jo hame transport kar dete hain. I was taken back to my childhood.

0: इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका, शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, ओनली शो ऑन मिर्ची जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री थी, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक था। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, लेकिन एक क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप। जसलीन रॉयल बादशाह का गाना इनाम वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। फिर एक नई नवेली एंट्री, ज़ारा खान स्केल्स का गाना मूव बॉडी ऑन गाना नंबर 9। संजू राठौड़ का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 8। हर्ष नुसी का साड़ी सुन पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके इस हफ्ते था ऑन गाना नंबर 7। ऐश किंग का किनिया सोनी गोइंग स्ट्रॉन्ग ऑन गाना नंबर 6। इन ऑल ऑनेस्टी ये गाना इस काउंटडाउन का मेरा फेवरेट गाना है, अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 5। आदित्य रिखारी रैवट और कुटलेखा का ए अजनबी अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग ऑन गाना नंबर 4। दिलजीत दोसांझ का डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। जिधर तू पीछे यातनगी ना चोपर जोगी डब दबी ना। द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक येट अगेन, वही शफल हो रहा है ऊपर नीचे 17 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन, दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। एंड द न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक मिट्टर और का गाना, मिट्टर और स्वरा वर्मा की आवाज में, मिट्टर और की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते नंबर 2 पर था, 1 पोजीशन ऊपर जम करके इस हफ्ते शीशा इज ऑन गाना नंबर 1। ये दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 2।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

शमशादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका वेंसडे की इस खूबसूरत शाम में। वैसे वेंसडे ना एक ऐसा दिन होता है जो यार ज्यादा बोलता नहीं पर सब कुछ समझ जाता है। मतलब मंडे का ड्रामा भी ये देख चुका होता है, फ्राइडे के प्लान भी ये जान लेता है, बस बीच में बैठकर ना हमारे सारे प्लान्स को जज कर रहा होता है कि अच्छा बड़े बड़े वादे किए तुमने वीकेंड के, चलो देखते हैं कर भी पाओगे या नहीं। वैसे आज का दिन ना थोड़ा कंपोज्ड, थोड़ा स्मग जरूर लगता है, तो यार समझ जाओ वेंसडे अपना काम कर रहा है। आप भी बताओ दोस्तों, आज आप थोड़ी कंपोज थे या कंपोज रहने की सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे? क्योंकि मुझसे पूछो तो यार मैं बहुत ही ज्यादा कंपोज्ड नहीं थी, लेकिन जब कभी भी शाम को आपके लिए धमाकेदार गाना बजाने का मौका मिलता है तब यार ये पूरी कायनात सारा कंपोजर मेरे लिए लेकर आती है। तो चलिए वही करते हैं, आपके लिए बजाते हैं ये अगला धमाकेदार गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स ऑल

0: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hut.
1: Hello,
2: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
1: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
2: श्रीनिवास पुरी से हेड कांस्टेबल दरवील सिंह बोल रहा हूँ.
1: हाँ जी.
2: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
1: थी किसी की, पता नहीं किसकी थी.
2: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है?
1: मैंने क्या किया पता?
2: आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे, तीन लोगों ने आपको कॉल किया है डायलर टोन सुन के. एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी जे जे जे जे जे. ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? तीन दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
1: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर ट्यून उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे ना?
2: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
1: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
2: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम.
1: आपका इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई.
2: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है. मैं आपको ये बता रहा हूँ, दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगे आप, समझिए आप. आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करने जा रही
1: हैं? सुनिए मत, सुने. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार हो
2: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे क्वालिटी ट्यून लगती है. आप बहस करने जा रही है मेरे से?
1: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
2: आपको क्वालिटी ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी क्वालिटी ट्यून लगाएंगी.
1: हाँ बताइए
2: आप क्वालिटी ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
1: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
2: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे.
1: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
7: विजिट टुडे 1358 ओकरी रोड, इजलिन.
8: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ 1000-year-old ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज. Comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
9: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा.
10: चढ़दे पंजाब बॉर्डर कबूतर नहीं टप सकदा, ते तू किस तरह टप आया?
9: अते एक बार इश्क हो जावे ता आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने.
11: बागी ते आशिक हद्दां सरहदां टप ही आउंदे ने.
9: ऐसे तरह दे जुनून परे इश्क दी कहानी है इश्कनामा.
12: रांझे दित्ते 12 साल ते मैं दित्ती आ जिंदगी.
9: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नू. फिल्म इश्कनामा.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
15: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
16: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
7: विजिट टुडे 1358 ओकरी रोड, इजलिन.

यार बॉलीवुड की एक अच्छी बात ये है कि सिंगर्स का काम ना कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। शाम शानदार लाइक सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और आज भी एक अच्छी आवाज सीधा दिल तक पहुंच ही जाती है, चाहे रोमांटिक हो, सुकून भरी हो या थोड़ी इंट्रोस्पेक्टिव। आज के गाने लाउड होने से भी ज्यादा लास्टिंग होने पे फोकस कर रहे हैं और ऑनेस्टली ये फेज काफी रिफ्रेशिंग लगता है। तो आप भी बताना कि आपको बॉलीवुड सॉन्ग में सबसे ज्यादा क्या कनेक्ट करता है, लिरिक्स या वॉइस? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत आवाज का ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
6: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
1: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
9: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
10: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
9: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
11: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
12: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: It's 4:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's go not donkey, have a funky time.
2: हर घर की समर की ना अपनी एक सिग्नेचर साउंड होती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और गर्मी शुरू होते ही कुछ आवाजें रोज सुनाई देने लगती है, फैन फुल स्पीड पे, आइस ट्रे खुलने की आवाज, और फिर किचन से ब्लेंडर का चलना। बस उसके बाद सबको पता होता है कि कुछ ठंडा और मजेदार बनने वाला है। थोड़ी ही देर में ट्रे में आता है लंबा सा ग्लास, थिक क्रीमी मैंगो लस्सी से भरा हुआ, ऊपर हल्की सी मलाई, कभी थोड़े पिस्ता, कभी थोड़ी इलायची। और पहले सिप के बाद बस एक ही ख्याल है, काश ग्लास थोड़ा और बड़ा होता। और घर में अगर चार लोग हो ना तो ब्लेंडर एक बार नहीं, चार चार बार चलता है, क्योंकि हर कोई कहता है यार मेरे लिए भी बना दो। उसकी डिमांड तुरंत शुरू हो जाती है, और शायद इसीलिए मैंगो लस्सी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, समर का एक रिचुअल है। और उसी रिच आम का स्वाद लाया है दीप अल्फोंसो मैंगो पल्प। तो आज ही ले आइए अपने नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर से, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तो चलिए, अब गर्मी का मूड थोड़ा ठंडा हो चुका हो तो बॉलीवुड के सुरों के साथ शाम को भी रिफ्रेशिंग बनाते हैं, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: दिस इज द ट्रिब्यूट टू तलाइवा फ्रॉम किंग खान एंड वन एंड ओनली
4: यो यो हनी सिंगर।

को फाइंड इट, डोंट एंग्री मी, माइंड इट। अरे मेरे जैसे डांस किसको आता है, कोरियोग्राफर को मैं ही सिखा दे, वो घर पे आता है।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: की टाइम। कुछ फिल्मों का नाम सुनते ही उनकी कहानी नहीं उनके एहसास याद आ जाते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और आज एक ऐसी मूवी की बात हो रही है, आवारापन। बॉलीवुड के उन फिल्म्स में से है जिसे वक्त के साथ लोगों ने और ज़्यादा प्यार दिया। डार्क इमोशंस, सोलफुल म्यूजिक और वो इमरान हाशमी का एरा यार, जब हर फिल्म के गाने ना सीधा प्लेलिस्ट में परमानेंट जगह बना लेते थे, क्योंकि वो गाने सिर्फ हिट्स नहीं होते थे, वो लेट नाइट ड्राइव्स, हेडफोन्स और अपनी ही दुनिया का एक साउंड ट्रैक बन जाते थे। और अब जब अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये आवारापन सुनाई देता है ना, तो लगता है कि जैसे एक नई आवाज़ उन कहानियों को फिर से महसूस करने का मौका दे रही हो। क्योंकि कुछ मेलेडीज़ की खूबसूरती ही यही होती है कि जनरेशंस बदल जाती है लेकिन इमोशंस वही रहती है। वैसे आप भी बताइए दोस्तों कि अगर मैं आवारापन बोलूँ तो सबसे पहले आपको उस फिल्म का कौन सा गाना या मोमेंट याद आता है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और चलिए, एक ऐसी आवाज जो पुरानी यादों को नए अंदाज में छू जाती है, अरिजीत सिंह की आवाज में सुनते हैं ये आवारापन राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
1: मिर्ची, फ्रेश माल।
2: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: Radio Mirchi, New Jersey, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shardar, let's go Nautanki, have a funky time.
2: कुछ लोगों को देखते ही ना लगता है कि इन्हें अलग दिखने के लिए कभी एफर्ट्स ही नहीं करने पड़ते होंगे। वो कहते हैं ना, सम थिंग्स शाइन विदाउट ट्राइंग। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी किसी की स्माइल, कभी उनका कॉन्फिडेंस, तो कभी बस उनकी प्रेजेंस। और वही बात चीजों पर भी लागू होती है। मतलब कुछ चीजें ना ट्रेंड्स के साथ नहीं चलती, वो हर दौर में अपनी चमक खुद लेकर आती है। और शायद इसीलिए डायमंड्स को सिर्फ ज्वेलरी नहीं, टाइमलेस एलिगेंस कहा जाता है। और अगर आप भी अपनी कलेक्शन में वो हमेशा वाली चमक ऐड करना चाहते हो तो तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, अवेल अप टू 25% ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस। और ओल्ड गोल्ड अबाउट 18 कैरेट एक्सचेंज करने पर 0% डिडक्शन। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। और दोस्तों मुझे भी बताना कि आपके हिसाब से किसी इंसान की सबसे खूबसूरत क्वालिटी क्या होती है, उनकी स्माइल, उनका कॉन्फिडेंस या उनका काइंडनेस। टेल मी ऑन इंस्टा @rjmirchisiddhi। और तब तक एक ऐसा गाना सुनते हैं जिसकी चमक कभी पुरानी नहीं होती। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virba, la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: हाँ जी कौन?
2: हाँ जी कौन?
3: हेलो, किससे बात करनी है?
2: किससे बात करनी है
3: भैया? किससे बात करनी है?
2: किससे बात करनी है
3: भैया? नंबर चेक करके,
2: नंबर चेक करके दोबारा मिला?
3: पागल
2: पागल,
3: पता नहीं कौन बोल रहा
2: है, पता नहीं कौन बोल रहा था।
4: इको आ रहा है, इको।
3: हेलो
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो, जेल साले भैया को मारूंगा तुझे, मैं बता रहा हूँ
3: भैया। नंबर देख,
2: नंबर देख के मिला।
3: हेलो
2: हेलो, क्यों परेशान कर रहा है किसी को? पागल हो गया क्या यार? पता नहीं कौन है, फोन करे जा रहा है, फोन करे जा रहा है। अबे पागल हो गया क्या यार? महंगा पड़ जाएगा, नंबर आ गया मेरे पास। पागल कहीं का?
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका? बुरा मत मानिएगा प्लीज।
3: रवि
4: है। रवि, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। अब एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे, उसमें एको नहीं आएगी।
3: कुकड़ू को
4: भाई, कुकड़ू को बहुत परेशान कर दिया आपने
3: भाई।
4: आप खत्म कर दो यार।
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
10: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
11: I am not going to bed with you ever again.
10: But why? What did I do?
11: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
10: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
11: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
10: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
11: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
10: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
12: Kisi zamane mein, माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: Tera kya hoga, Kalia?
16: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
15: Ab, mirchi kha.
17: Radio Mirchi, it's hot.
18: Sham Shandar, let's go not donkey, have a funky time.
19: शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और लाइफ में ना अक्सर जो चीजें सबसे ज्यादा एक्साइटिंग होती है, वही कभी कभार सबसे ज्यादा ओवरवेलमिंग भी लगती है। फिर चाहे नई जॉब हो, नया सिटी या कोई बड़ा डिसीजन, यार शुरुआत में ना सब कुछ एक रोलर कोस्टर राइड जैसे ही फील होता है। और इसी एक्साइटमेंट और कन्फ्यूजन के बीच हम अक्सर वो गलतियां कर बैठते हैं जो शायद थोड़ी सी गाइडेंस से ना अवॉइड हो सकती थी। और घर खरीदना भी कुछ ऐसा ही माइलस्टोन है, इतना बड़ा डिसीजन कि एक्साइटमेंट तो होती ही है लेकिन सवाल भी हजार होते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि इस जर्नी को थोड़ा सिंपल कैसे बना दिया जाए और सबसे कॉमन मिस्टेक से कैसे बचा जाए। मेरे साथ है मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लाइन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
2: Good evening, Mitchell. This is your friend Bish from Lion Mortgage. Hope you all had a good day at work. Since rain has left our area and the US markets fall as Fed holds interest rates, all eyes were on the Federal Reserve as they conclude their July policy meeting this afternoon. While most economists expect the Fed to keep benchmark interest rates steady, persistent inflation and rising oil prices mean the central bank isn't ruling out keeping rates higher for longer or even raising them later this fall. That uncertainty in bond market is keeping mortgage rates firmly in place for now. So friends, buying your dream home, pre-approval is free, advice is free. Call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate is 6.375%. 20-year fixed mortgage rate is 6.25%. 15-year fixed mortgage rate is at 5.75%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. And I will spell it out. It is lionmtg.com. Remember, listeners, Lion Mortgage is also offering second mortgages. Those who have equity on their homes and have good rate on the first mortgage can borrow and tap the equity on their homes with second mortgage. They can invest those to buy investment properties, pay off high credit card debts, student loans. And remember, the rates are also like 20-year, 30-year fixed on those home second mortgages. Lion Mortgage specializes in conventional loans, FHA loans, jumbo loans. We also offer zero closing cost refinance option. So once again, friends, buying your dream home or refinancing, don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
0: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
3: From the finest kitchens in India, thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor and freshness guaranteed. Deep cow to jano.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
6: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
7: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
8: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, ईकेजी एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स.
7: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स. ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस. फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu.
9: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: Tera kya hoga Kalia?
13: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar.
12: Ab mirchi kha.
14: Radio Mirchi. It's hot.

0: starts 5:30 PM. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: कितने बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ कॉफी पीने निकले थे लेकिन वापस आते आते जिंदगी के बड़े डिसीजंस भी ले लिए। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी और नाम सुना मुसाफिर कैफे। और मुझे लगा कि यार कैफे का असली मेन्यू कॉफी थोड़ी ना होता है, वो तो कॉन्वर्सेशंस होते हैं। जी हाँ, नेटफ्लिक्स पर आई नई सीरीज मुसाफिर कैफे, जिसमें विक्रांत मेसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना नजर आ रही है। कहानी तो वैसे कैफे से शुरू होती है लेकिन असल में बात उन लोगों की है जो जिंदगी के सफर में मिलते हैं, कुछ पल साथ रहते हैं और फिर हमारी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि यार कॉफी के कॉन्वर्सेशंस ही ऐसे होते हैं, कोई पहली बार आई लाइक यू बोलता है और कोई कभी कभार मुझे बस एक बात बतानी है से शुरू करता है। किसी टेबल पर दोस्ती शुरू होती है तो किसी दूसरे टेबल पर टेक केयर बोल के लोग अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। कभी किसी को नई जॉब मिलती है, कभी स्टार्टअप का आइडिया बनता है, कभी शादियां फिक्स होती है, तो कभी बस दो दोस्त 3-4 घंटे तक दुनिया भर की बातें करते रहते। लेकिन पता है सबसे मजे की बात क्या है कि सालों बाद ना कॉफी की टेस्ट याद रहे या ना रहे, लेकिन उस टेबल पर हुई हर कॉन्वर्सेशन वर्ड बाय वर्ड याद रहती है। वैसे दोस्तों आपने भी ऐसी कॉन्वर्सेशन कई बार की होगी, तो ऐसे किसी कैफे का नाम अगर आपको रखना हो तो वो क्या होगा? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्दी SIDDHI। और मुसाफिर कैफे क्या आपने भी देखी जरूर बताना। और तब तक ऐसा बॉलीवुड का गाना सुनते हैं जो हर कॉफी डेट और हर दिल की बात को और भी खूबसूरत बना देता है। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।

की टाइम। कुछ फोटोज देखते ही सारा सीन फिर से रिप्ले हो जाता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और कुछ फोटोज देखते ही ना सब कुछ याद आता है कि कौन लेट आया था, किसने सबसे ज्यादा फोटोज खींचे थे और कौन बिना रिहर्सल के डांस फ्लोर का हीरो बन गया था। फिर चाहे वो फोटोज बेस्ट फ्रेंड की शादी के हो, या पहली दिवाली विद फैमिली के हो, या कोई ऐसे फंक्शन की जहाँ सालों बाद सब एक साथ मिले हो। और इसीलिए तो फोटोज में ना सिर्फ चेहरे नहीं होते, पूरा मूड कैप्चर हो जाता है। और जब कोई मोमेंट इतना खास हो तो उस दिन पहनी हुई हर चीज भी उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। और शायद इसीलिए इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप का रिश्ता सिर्फ फैशन से ही नहीं, यादों से भी होता है। और अब उसी एहसास को न्यू जर्सी के और भी करीब लाया है फ्रंटियर रास। उनका USA फ्लैगशिप स्टोर अब एडिसन में ओपन है, जहां हैंडलूम साड़ीज, ब्राइडल कोटोर, मेंस वेयर और रेडी टू वेयर के साथ मिलती है 70 ईयर लीगेसी ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप। विजिट फ्रंटियर रास एट 1655 ओक ट्री रोड इज़िलिन न्यू जर्सी। और दोस्तों, आपके फोन में वो कौन सी ऐसी फोटो है जो देखते ही आपको पूरा दिन याद आ जाता है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और साथ में ये भी बताइए कि उस फोटो का परफेक्ट बॉलीवुड बैकग्राउंड सॉन्ग कौन सा था। हो सकता है कि आपकी यादों का वही साउंड ट्रैक मिर्ची पैग लगाना बन जाए। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Sharda, let's do not donkey, have a funky time.
2: सच्ची सच्ची बताना दोस्तों, स्कूल की सबसे बड़ी टेंशन होमवर्क होती थी क्या? टीचर का वो कहना कि रोल नंबर 27 जरा बाहर तो आना। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और प्राइम वीडियो का नया शो आदर्श बाल विद्यालय और उसका बैकड्रॉप यार एक गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर स्कूल को संभालने की कोशिश करते हैं। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार के मेनन नजर आ रहे हैं, वो भी सीरियस रोल्स के अलावा कॉमेडी, और स्कूल के केओस में बहुत ही मजेदार लग रहा है। और नाम सुनते ही ना मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए, मतलब वो अटेंडेंस का रजिस्टर, वो चौक की स्मेल, पीटी पीरियड का एक्साइटमेंट, और वो एक दोस्त जो हर मंडे बोलता था कि यार होमवर्क तो किया है लेकिन कॉपी घर पे रहेगी। और एनुअल डे, मतलब वो दिन जिसमें डांस से ज्यादा टेंशन होती थी कि पेरेंट्स को स्टेज से कैसे ढूंढे। वैसे आप भी बताइए स्कूल का वो कौन सा टीचर या इंसिडेंट है जिसे याद करके आप आज भी बहुत हंसते हो? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए स्कूल के उन यादों के नाम एक बॉलीवुड क्लासिक राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
1: Hello,
2: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
1: हेलो, क्या बोल रही हूँ मैं?
2: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरवीर सिंह बोल रहा हूँ.
1: हाँ जी.
2: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
1: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
2: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे, 3 लोगों ने आपको कॉल किया है डायलर टोन सुन के. एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी, जे जे जे जे जे. ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? 3 दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
1: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर टोन उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
2: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
1: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
2: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम. आपका
1: पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई.
2: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ. दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगी आप, समझिए आप. आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करने जा रही हैं?
1: नहीं, मत सुने. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार होगा
2: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करने जा रही है मेरे से?
1: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
2: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
1: हाँ बताइए.
2: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
1: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
2: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था, और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे.
1: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट स्टाइल.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
7: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
11: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
12: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
11: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
13: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
14: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
15: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
16: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
15: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
17: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
18: एक ही होता है।
15: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बात हो रही है एक ऐसे एल्बम की यार जिसके हर एक गाने ने ना दिल को छू लिया था। जी हाँ, मतलब कभी कोई पल ऐसा आता है जहां वक्त रुक सा जाता है और बस दिल की धड़कनें चल रही होती है। मेट्रो इन दिनों का इन दिनों टाइटल ट्रैक वही गाना है जो यार टर्न पाइक या गार्डन स्टेट पार्कवे के ट्रैफिक में भी ना सुकून दिला दे। तो इस गाने की तैयारी के लिए प्रीतम ने सोहम से बस इतना कहा था कि ऐसा गाना कि लगे कि सूरज की रोशनी ना पर्दों के बीच में से आ रही हो। और आपको पता है ये जो गाना है इसका जो इंट्रो गिटार रिफ है मुंबई के एक बालकनी पे मॉनसून के दौरान रिकॉर्ड हुआ था ताकि रेन की ना थोड़ी नेचुरल सी साउंड आए और एक बहुत ही खूबसूरत सा एम्बियंस बने, और शायद इसीलिए ये गाना इतना एरी और सूना सूना सा लगता है। वैसे आपके इन दिनों में वो कौन सा मोमेंट है जब जिंदगी थोड़ी रुक सी गई है ऐसा लगता है? डीएम मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और चलिए इस पल को थोड़ा रोक लेते हैं विद द नेक्स्ट सॉन्ग इन दिनों फ्रॉम मेट्रो इन दिनों राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
4: सिर्फ हैप्पी फ्रेंडशिप डे कह के काम मत चलाओ। गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन। ज्योत्सना एंड तरुण शर्मा ऑफ कल्टीवेट टैलेंट्स अनलिमिटेड प्रेजेंट दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0। लाइव बैंड एंड बॉलीवुड सिंगर्स, शायरी और नॉनस्टॉप ओपन डांस फ्लोर।
5: एंड द बेस्ट पार्ट, सिर्फ $65 में 3-course डिनर और ढेर सारी मस्ती। फ्राइडे ऑगस्ट 7th 7 PM एट रॉयल अल्बर्ट पैलेस, न्यू जर्सी। टिकट्स अवेलेबल ऑन sulekha.com और कॉल 7322972409।
6: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा।
7: चढ़दे पंजाब बॉर्डर कबूतर नहीं टप सकदा, ते तू किस तरह टप आया।
6: अते एक वार इश्क हो जावे तां आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
8: बागी ते आशिक हदां सरहदां टप ही आउंदे ने।
6: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा।
9: रांझे दित्ते 12 साल ते मैं दित्ती आ जिंदगी।
6: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज़ गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नू। फिल्म इश्कनामा।
10: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुरा कर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
11: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
12: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
13: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
12: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
14: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
15: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
14: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot

0: at 6:30 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। और कुछ बातें होती है ना जो जुबान तक आते आते रुक सी जाती है, पर दिल उन्हें कभी छोड़ नहीं पाता। इन दिनों मेट्रो का बातें कुछ अनकही सी एक ऐसा ही गाना है। ये वो गाना है जहाँ हर नोट ऐसे गिरता है ना कि जैसे लगता है कोई पुरानी डायरी का एक बहुत ही खूबसूरत सा पन्ना खुल गया हो। और एक सुंदर सी कहानी इस गाने से जुड़ी है, मतलब इस गाने में जो हमिंग है, एक बहुत ही हल्की सी हमिंग है जो प्रीतम ने बैकग्राउंड में डाली थी, वो दरअसल गाने के कंपोजिशन में कभी थी ही नहीं। वो एक्चुअली ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन थी और एक पल में ही वो बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग इस गाने में वो जुड़ गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सॉफ्ट हमिंग। और शायद इसीलिए ये गाना सुनते ही ऐसा महसूस होता है जैसे मेमोरीज खुद चलकर अपने पास आ रही हो। और इस गाने में एक बहुत ही खूबसूरत सी नरमी, एक बहुत ही शराफत और एक नज़ाकत है जो इस शाम को भी और खूबसूरत बना दे। तो चलिए इस खूबसूरत शाम को और भी खूबसूरत बनाते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो वो कौन सी ऐसी अनकही बात है जो आपके दिल में रह गई है और कभी किसी से आपने कही नहीं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्दी SIDDHI। और आज की ये जो शाम है उन्हीं अनकही लम्हों के नाम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी ना जिंदगी के सबसे बड़े सेलिब्रेशंस बिल्कुल छोटी छोटी जीतों में छुपे होते हैं। जी हाँ, मतलब शाम के इस वक्त में जब न्यू जर्सी की ट्रेन एकदम स्लो हो जाती है और लोग घर की तरफ बढ़ उठते हैं, कर सलाम इन दिनों मेट्रो का एक परफेक्ट रिमाइंडर लगता है कि लाइफ जितनी भी भाग दौड़ वाली हो उसमें छोटी छोटी विक्ट्रीज का सलाम जरूर बनता है। और इस गाने की मेलेडी एक कैजुअल जैम से निकली थी, मतलब म्यूजिशियंस ने ना टिन क्रेट्स और एम्प्टी कैन से बीट से एक पूरे सिटी हार्टबीट की वाइब क्रिएट की थी। और इसीलिए जब भी ये गाना बजता है ना, लगता है कि यार शहर खुद आपको सलाम कर रहा हो। तो दोस्तों मुझे भी बताइए कि आज की आपकी वो छोटी सी जीत क्या थी, एक ट्रैफिक लाइट का पेशेंस या एक बॉस को दिया हुआ सही जवाब। कुछ भी हो, सेंड मी योर सलाम मोमेंट ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए न्यू जर्सी के स्पिरिट को सलाम करते हुए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो दिल टूटने का दर्द कम तो नहीं करते, बस उस दर्द को ना थोड़ी नजाकत से पकड़ लेते हैं। ओ मेरी जान की आवाज में मेट्रो का एक ऐसा ही गाना था जिसमें हल्की सी वॉर्म्थ भी है, हल्का सा दर्द भी है और एक सुकून है जो यार शाम को ना बहुत ही खूबसूरत बना देता है। और कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो बिल्कुल भी शांत रखा गया था। मतलब वैसे तो यार प्लेबैक सिंगिंग में स्टूडियो जनरली शांति होता है, लेकिन ये स्टूडियो थोड़ा ज़्यादा खास था। नो एक्स्ट्रा लाइट्स, नो बिग सेटअप, बस के हेडफोन्स और एक इमोशनल सा साइलेंस। तभी तो यार शायद इस गाने में एक ऐसी स्टिलनेस है जिससे ना हार्ट ब्रेक भी खूबसूरत सा लगता है। तो अगर इस गाने को आपने दिल से महसूस किया है के की आवाज़ में, तो आज की शाम में, न्यू जर्सी की इस खूबसूरत शाम में ये ट्रैक प्ले करते हैं आपके उस खास मेरी जान के लिए। तो चलिए वैसे आप भी बता सकते हो ये गाना आप किसको डेडिकेट करना चाहते हो। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और ऐसा कौन सा खास एल्बम है जिसका हर एक गाना आपके लिए खूबसूरत है। फिलहाल तो सुनते हैं के की आवाज़ में ओ मेरी जान। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La birba la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Advocate Atul se baat kara dijiye sir.
2: Bol raha mat kaun?
3: Atul ji. असल में मेरे को माफ करना, आपको डायरेक्टली फोन कर रहा हूँ, मैं परेशान बहुत हूँ। समीर बोल रहा हूँ एडवोकेट जी।
2: कितने नंबर दिया आपको मेरा?
3: नंबर के लिए क्षमा चाहता हूँ सर, आपके पैर पकड़ता हूँ। मैंने आपका नंबर एक जान पहचान वाले से निकलवाया था।
2: ये क्या काम है?
3: वकील साहब, मेरी बीवी मेरे को धोखे दे रही है।
2: अच्छा,
3: मेरी बीवी मेरी शादी को 7 साल हो गए, मेरे को 7 साल से कंटिन्यूस धोखे दे रही है।
2: मेरे चैंबर में आइए तो हम जरा बैठ के बात करते हैं आपसे।
3: मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ वकील साहब, मेरी जान को बचाओ, मेरे को पिछले हफ्ते भी धोखे देती है हमेशा। मैं वही बता रहा हूँ, देखिए, चाहे मेरी पैंट हो, चाहे शर्ट हो, चाहे बनियान हो, चाहे मेरा अंडरवियर तक हो, वही धोखे देती है। था क्या धोखे, इतना धोखे देती है यार। वो तो गंदा भी नहीं था अंडरवियर, उसको भी धोखे दे दिया उसने।
2: किसने नंबर दिया आपको ये फालतू मजाक करने? मजाक क्या कर रहे हैं?
3: मजाक की बात नहीं है, बोलने की बात नहीं है। बेवकूफ
4: सर, बेवकूफ नहीं, उसको मुर्गा कहते हैं। अतुल, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, नंबर दिया था, उन्होंने कहा था कि आपका मुर्गा बना दें, आपका मुर्गा बना दिया आप रेडियो मिर्ची में।
3: आप भी धोखे, ये देखो धोखे दे दिया।
4: बुरा ना माने, होली है, मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए
2: कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
9: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस, अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
7: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
10: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
11: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
12: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
11: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
13: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
14: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
13: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
15: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक, they're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शाम दा लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हर शहर के बीच में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो यार खास बन जाते हैं। लाइफ इन अ मेट्रो का रिश्ते, वही एक ऐसा गाना है जिसमें यार पूरे मेट्रो सिटी की हार्ट बीट बसी हुई है। मतलब ये मेलेडी एक कैजुअल सी लेट नाइट जैम सी बनी है, बिना स्क्रिप्ट, बिना प्लानिंग, बस दोस्ती और म्यूजिक की वॉर्म्थ। तो शाम के वक्त जब न्यूजर्सी में अपने दोस्तों के साथ बैठो ना, तो बस गिटार या कोई भी एक टिन के डब्बे के साथ भी एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना जब दिल से निकलता है तो वही गाना होता है यार लाइफ इन अ मेट्रो का रिश्ते। और इस गाने ने ना कुछ ऐसी ही फील दी है, मतलब ऐसा गाना है जो अक्सर हम सोचेंगे कि यार दोस्तों के साथ ही गाना चाहिए। तो बस आज लाइफ इन अ मेट्रो का रिश्ते ये गाना रिक्वेस्टेड है बाय आदित्य मदान, जो कि रहते हैं पिस्कैटवे में, अपने दोस्तों के लिए। तो दोस्तों लाइफ इन अ मेट्रो का ऐसा कौन सा गाना है जो आपके लिए खास है, मुझे जरूर बताना, वो बजाऊंगी मैं यहाँ। और अगर कोई ऐसा खास एल्बम है जिसका हर एक गाना आपके दिल को छूता है तो वो भी जरूर बताना। फिलहाल बजाते हैं आदित्य की रिक्वेस्ट पर दृष्टि फ्रॉम लाइफ इन अ मेट्रो राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Inefficient.
3: Very complex.
4: Clumsy hai.
5: Confusion hi confusion.
0: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
7: Sirf happy friendship day kehke kaam mat chalao. Get ready for the ultimate friendship day celebration. Jyot Sinha and Tarun Sharma of Cultivate Talents Unlimited present Dosti Special Jamming Night 1.0. Live band and Bollywood singers, shairi or non-stop open dance floor.
8: And the best part, sirf $65 mein 3-course dinner aur dher sari masti. Friday, August 7th, 7 PM at Royal Albert's Palace, New Jersey. Tickets available on sulekha.com or call 732-997-2409.
9: Suno brides, agar apni shaadi mein लगना है एकदम क्वीन
10: तो आइए फैशन क्वीन यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन
10: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Tera kya hoga, Kalia?
12: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
11: Ab, mirchi kha.
13: Radio Mirchi, it's hot.
14: It's 7:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
15: Sham Shardar. Let's do not donkey have a funky time.
16: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और कभी कभी अलविदा ना ज्यादा शोर नहीं मचाते बस एक गीत बनकर दिल में उतर जाते हैं लाइफ इन अ मेट्रो का अलविदा केके की आवाज में एक ऐसा ही गाना है क्योंकि उनकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई है कि लगता है जैसे उन्होंने अपने दिल के अंदर की खामोशी को गाने में घुमा दिया हो कहा जाता है कि अलविदा का जब फाइनल टेक हुआ था वो रात को एक ऐसे लम्हे में रिकॉर्ड हुआ था जब स्टूडियो में ना सिर्फ एक फेंट सी स्मूथ सी लाइट थी जैसे कि गाना खुद डार्कनेस को भी सूथ कर रहा हो गाना सुनते ही एक अजीब सी पुरानी याद बहुत ही खामोशी से सामने आ जाती है एक ऐसा गुड बाय जो कभी बोला या शायद कभी बोला ही ना गया हो कभी कभी लगता है यार केके ने जब ये गाना अलविदा गाया था तो शायद उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा कि किसी एक दिन वो भी हमें बिना बोले अलविदा कह जाएंगे तो चलिए आज केके की ही याद में उन्हीं के एक बहुत ही बड़े फैन रमा जो कि रहती है एडिसन में उनकी रिक्वेस्ट पर अलविदा फ्रॉम लाइफ इन अ मेट्रो ब्यूटिफुल एल्बम विच ऑल द ब्यूटिफुल सॉन्ग्स तो दोस्तों आपका भी कोई ऐसा खास एल्बम है जिसका हर एक गाना आपके दिल को छूता है तो मुझे जरूर बताना ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI और फिलहाल बजाते हैं रमा की रिक्वेस्ट पर अलविदा फ्रॉम लाइफ इन अ मेट्रो केके की आवाज में राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट

92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास,

0: और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
1: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi SIDDHI और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Naam gum jayega, chehra ye badal jayega, which is all very true. To ab thodi tameez dikhate hue, tumhe pata hai ki ek din tumhara naam gum jayega, tumhara chehra badal jayega. Jab tak ye naam aur chehra hai, be a nice human being. Dusre insaan ko jhoot mat bolo, ho sake to cheating mat karo. Lekin agar aap wo insaan ho jis par cheating hui hai, and now you are feeling as used as a tissue paper, फील बुरा मत करो, क्योंकि मैं आपकी जिंदगी में सिर्फ यही तो करने के लिए आई हूँ, आपकी जिंदगी में टिश्यू पेपर बनके आपके दुख के आंसू हटाकर सुख की खुशी लाने के लिए. आई एम हियर टू टॉक टू यू अबाउट द बैड पर्सन हु डिड रॉन्ग टू यू, और उसके बारे में पूरा लोडाउन देने के लिए यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशनी, नाम के स्पेल